फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तो उसकी पैरवी करना, कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने उसको कबूल न किया और हमारी आयतों को झुठलाया वो दोजख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे।

ऐं तलार वेझो ॿिनि ॾींहनि खां गुम थियल नौजवान जो लाशत वारसन क़तल जो ख़दशो ज़ाहिर करे छॾियो। ग़ुलाम रसूल शारी जो माड़कवा जे जमाली शाख मां लाशत वारसन जो चवणु आहे त ख़दशो आहे त असांजे नौजवान खे क़तल करे लाश शाख में छुलायो वियो आहे। हुनजे जांच कराई वञे। पुलिस जो चवणु आहे त लाश अस्पताल मुंतकिल कयो आहे। पोस्टमार्टम बाद वाकिए बाबति ख़बर पवंदी।

0: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam Nilaya. पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट कोल्ड बेस्ड
2: खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
3: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है. इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो. आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें. शराइत और जवाबित लागू हैं.
4: अच्छा अवां अच्छन वारन खां परेशान आयो. पेश आहे आर्श क्रीम हेयर कलर ताकि खास मौके जी तैयारी. हर लम्हे पंहिंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो. आर्श क्रीम हेयर कलर सां पंहिंजी शख्सियत में आणियो नओ रंग, नओ अंदाज ऐं नई ताज़गी. अॼु ई पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्श क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओ रंग. आर्श क्रीम हेयर कलर, हर रंग में खूबसूरती, हर अंदाज में एतमाद.
5: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं, और हर कदम एक नई

கேட்குறான் அந்த ஸ்டேஷன் தான். ஏ மாமா ஜோ சாத்தி அவன் ஜோ ஆர்ஜே அவன் ஜோ மேஸ்பான் நேமத்தல ஜுனே ஜோ साईं जा गाल कंदा से पुराण यादगिरन जी चवंदा आहिनि त अॼ खां पुराणो वक़्तु तमामु बहितर हुयो, उहो छो बहितर हुयो, कीअं हो त पाण जॾहिं जोगिन जीअं रौलाक हुयासीं, केतिरो विशाल में हुसनाक हुई, पर हाणे प्यार जूं मिड़ई मुंदूं तूं वेबसाइट ते विञाए छॾियूं आहिनि, ऐं पंहिंजे इश्क जूं शर्मीलियूं धुनूं जेकी तोखे सुरंदे खे ॿुधाइणियूं हुयूं से तो इंटरनेट जे बे हिसाब ऐं बे हिजाब प्यानो ते ॻाए छॾियूं ऐं ॿुधाए छॾियूं। कंप्यूटर जे बे अंत सागर जे पाताल में लहंदे लहंदे तोखे चांडरोकिन जी दरिया में तरण, मुखड़ीअ जी महक खे मारण, पोपटनि खे पाबूअ मां ॾिसण ऐं खुली हवा में साह खण विसरी वियो आहे। बहरहाल चवण जो मतिलबु इहो त दौर सां गॾु सभु कुझु आहिस्ते आहिस्ते बदिलजी वियो आहे। ज़माने सां गॾु ज़माने जा तौर तरीक़ा, घुर्जूं, तक़ाज़ाऊं ऐं मयार जा मापा बि साॻिया न आहिनि रहिया। ज़मानो अलाए छो शॉर्टकट ऐं रीमिक्स जे रंगनि जो दीवानो बणिजी वियो आहे, ऐं साईं जा अहसासनि जे अखि नाॾो उहा हिकु अहिड़ी अलमनाक ऐं भयानक हक़ीक़त आहे जेके असां जहिड़ा कंहिं न कम जा चरिया माण्हू ऐं अज़ीम अलमियूं चवनि था। हाणे इंतज़ारे में बेक़रारी आहे, छो बेक़रारी आहे त इंसान खे पुराणियूं यादगिरियूं अचनि थियूं, ऐं अॼोको सिस्टम जीअं बि आहे, इंटरनेट जो आहे, गूगल जो आहे, बहरहाल पुराणो वक़्तु पुराणो, उहे यादगिरियूं आहिनि, उहे माण्हू संभाले रखे त ज़रूरु कमु ईंदियूं।

Muchísimo ya, aunque जी समीन प्रोग्राम रोशन सुबह में अवे इंतजार हों ओसड़ हों सवाल जो असो अज सवाल है तमाम आसान है असा जे बाहर खास कर बहराड़ी में रहन था उनका इो पुछंदे तलाक में कड़ा फसल इन वक्त लही चुका कड़ा फसल अवा वट तैयार बीठा या उ कुछ टाइम में फसल तैयार थी वा तो ये ना त हर एक इलाके में फसल पंहिंजो पंहिंजो आहे तव्हां ॾिसो त असांजो पंहिंजो जेको सखर डिवीज़न आहे ख़ासि करे पंहिंजो लाड़काणो डिवीज़न जेका आहे उन में कश्मोर ज़िलो आहे जेकबा ज़िलो आहे शिकारपुर लाड़काणो ऐं कंबर डिस्ट्रिक्ट आहे उन जा फसल हेड़ा पंहिंजा पंहिंजा आहिनि ऐं जेकॾहिं असां ॾिसंदासीं त पंहिंजो सखर डिवीज़न में घोटकी ज़िलो आहे ऐं सखर ज़िलो आहे खैरपुर ज़िलो आहे त उन जा इलाइक़े में पंहिंजा पंहिंजा फसल आहिनि ख़ासि करे जेको दरिया जो पंहिंजो परियों पासो आहे लाड़काणे खां उन जा फसल पंहिंजा आहिनि जंहिंमें कंडियारो अची थो वञे नौशरो फेरोज़ मोरो अची थो वञे सकरण अची थो वञे वेंदे हाला हैदराबाद ताईं उते फसल पंहिंजा पंहिंजा आहिनि ऐं दादू ज़िलो जेकॾहिं सेवण पंहिंजो जामशोरो ज़िलो ॾिसूं त असांजो काशे जो इलाइक़ो आहे जेकॾहिं कंबर खां परियां ॾिसंदासीं बलोचिस्तान जो इलाइक़ो लॻे थो कंबर ज़िले खां दादू ज़िले खां जामशोरो ज़िले खां त इहो जाबलू इलाइक़ो आहे जाबलू खां नए बि वहंदी आहे त उते बरसाति वारो सिलसिलो हूंदो आहे जिते बरसाति वारो सिलसिलो हूंदो आहे उते फसल हिकिड़ा अलॻि हूंदा आहिनि मुनफ़रद हूंदा आहिनि जीअं असांजो थर जो इलाइक़ो आहे मिठी मीरपुर ख़ासि जो इलाइक़ो आहे त उते बि वठे थी आहे यानि मींहं वसण खां बाद में कुझु अहिड़ा फसल कुदरती तयारु थींदा आहिनि कुझु फसल वरी पोखिया वेंदा आहिनि असांखे मिठी वारा ज़रूरु ॿुधाईंदा मातली वारा ज़रूरु ॿुधाईंदा मीरपुर ख़ासि वारा ज़रूरु ॿुधाईंदा त असांजे इलाइक़े में कहिड़ा फसल तयारु आहिनि कहिड़ा फसल जेको आहे सो लही चुका आहिनि ऐं अहिड़े हिसाब सां पंहिंजो हैदराबाद आहे ऐं असांजो जेके बि इलाइक़ा आहिनि असांखे तव्हां ज़रूरु ॿुधाईंदव पंहिंजो इनबॉक्स में मैसेज इनबॉक्स में मैसेज करण जो तमामु आसान तरीक़ो आहे तव्हां जेको आहे सो इनबॉक्स में ईंदव ऐं राइट ऑप्शन में अची करे तव्हां एल आर के लिखी स्पेस ॾींदव ऐं तव्हां पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो पंहिंजे इलाइक़े जे फसल जो नालो लिखी करे तव्हां असां सेंड कंदव 888 ते जेके दोस्त असांजो फेसबुक ते प्रोग्राम ॿुधनि पिया असां उनखे गुज़ारिश कंदासीं त असांजी फेसबुक जी आई डी आहे GFM88 असांजी आई डी आहे असांजो पेज आहे फेसबुक जो तव्हां उन ते बि पंहिंजे पंहिंजो सवाल जेको असां कयो आहे पर सवाल न आहे असां अवां खां मालूमात वठणु पिया चाहियूं त कहिड़नि कहिड़नि इलाइक़नि में कहिड़ा कहिड़ा फसल आहिनि तव्हां असांजे फेसबुक ते बि मोकिले सघो था तव्हां असांखे लाइव कॉल जे ज़रिए बि असांखे ॿुधाए सघो था ऐं इन में का बि जेको आहे सो कुदो को न आहे पंहिंजे पंहिंजे इलाइक़े में जेकॾहिं हिकिड़ा शहर में माण्हू रहनि था त उन जूं ज़मीनूं उन जूं ॿनियूं उन जा फसल बहराड़े में पंहिंजे पंहिंजे ॻोठनि में ज़रूरु आहिनि त असांजा जेके ज़मीनदार भाइर आहिनि उनखे बि पंहिंजी फसल जी तमामु सुठी ॼाण हूंदी आहे ऐं ख़ासि करे जेको असांजो आबादगार आहे हारी आहे कुड़मी आहे उहो त असांजे ज़मीननि जो फसल जो डॉक्टर आहे ऐं उनखे वधीक ॼाण हूंदी आहे त असांजे इलाइक़े में हिन मौसम में हिन सीज़न में कहिड़ो फसल थिए थो अवां असांखे लाइव कॉल ते ॿुधाए सघो था असांजो नंबर आहे 0332123228

पाकिस्तान पारां अफ़गानिस्तान जी सूरतहाल ते सख़्त ॻण ते ज़ाहिर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान पहिरियों मुल्क हो जंहिं अफ़गान ॿाहिरां लाइ पंहिंजा दरवाज़ा खोलिया। अफ़गानिस्तान में जटादार अमन सलामती ऐं इस्तक़ाम लाइ लाॻीतो ध्यानु ज़रूरी आहे। तालिबान मां उमेद हुई त उहे पंहिंजे वाइदनि जी पासदारी कंदा। न्यूयॉर्क में ओ आई सी जे अफ़गानिस्तान बाबति राबता ग्रुप खे ख़िताब कंदे इसहाक़ डार चयो त अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि गुरुअनि जी मौजूदगी ते ॻणती आहे। गुज़िरियल हफ़्ते क्वाड में आपघाती धमाके में 24 पाकिस्तानी शहीद थिया। तालिबान दहशतगर्दी जो मुकमल ख़ात्मो यकीनी बणाइनि। जनरल असेंबली जे इजलास खे ख़िताब दौरान ट्रंप पारां हिकु भेरो ॿीहर पाक भारत जंग ख़तमु कराइण जो ज़िक्र। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी तारीफ़। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त मूं पाक भारत जंग समेत 8 जंगियूं ख़तमु करायूं आहिनि। पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म बि चयो त मूं जंग ख़तमु कराए लखे हयातियूं बचायूं।

0: गयल कौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गोतरेस चयो आहे त गुज़िरियल ॾहाके में शुरू थियल जंगियुनि तबाही जा असर छॾिया जॻहियूं बेअसी सां जारी रहियूं ऐं शहरुनि खे निशानो बणायो वियो जॻहियुनि में इंसानी हक़ पायमाल करण समेत मुख्य हथियार बणायो वियो रुगो फ़ौजी ताक़त सिक्योरिटी मुआशी कुवत इस्तेकाम जी ज़मानत न आहे अमून जे क़याम लाइ सभिनी खे गॾिजी क़दम खणणा पवंदा जनरल असेंबली इजलास खे ख़िताब कंदे अंतोनियो गोतरेस चयो त ताक़त जो इस्तेमाल मसइलनि जो हल न आहे आलमी कानून सभिनी लाइ बराबरि आहिनि अमुन लाइ हिकु हंधि वेही मसइलनि जो हल घड़णो पवंदो जंग हर सूरत में बंद इमदादी सामान जी फरहमी जारी रहणु घुर्जे जहाज रानी जी आज़ादी बि बहाल थियणु घुर्जे हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में मामूली लात करे छॾी पेट्रोल 1 रुपयो 70 पैसा फी लीटर सस्तो नओ अघु 392.05 रुपया मुक़र डीज़ल जे फी लीटर अघ में 3.12 रुपया घटिताई नओ अघु 496.96 रुपया थी वियो जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल ऐं डीज़ल जा नवां अघु 23 सेप्टेम्बर लाइ हूंदा वफ़ाक़ी हुकूमत जो धरणे वारे मामले ते पीटीआई सां ॻाल्हियूं करण खां इनकार वफ़ाक़ी वज़ीर अतातार चयो आहे त पीटीआई वारनि जी ॻाल्हियुनि बाबति तारीख़ सुठी न आहे हिननि सां ॻाल्हियूं करण जो को फ़ाइदो बि न आहे पिशावर में तकरीब खे ख़िताब कंदे ऐं मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अतातार चयो तहरीक इंसाफ़ खे इस्लामाबाद में अची अमून अमान जी सूरताल ख़राब करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी पीटीआई वारा होश खां कमु वठण बि सूरत में अहिड़ा नतीजा
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था पोलियो मतिलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी
3: हर दिन हर पहर ज़िंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

जी असीं वञा प्रोग्राम रोशन समय सां अॼु सवाल नओं आहे त अव्हां जे इलाइक़े में कहिड़ा फ़सल हिन वक़्तु तयारु आहिनि या जेको आहे सो लही चुका आहिनि। असां अहिड़नि दोस्तनि खे बि गुज़ारिश कंदासीं जेके असांजे काशे जे इलाइक़े में आहिनि याने जाबलू इलाइक़े में आहिनि, असां उनखे बि गुज़ारिश कंदासीं त असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो ऐं कॉल करे मैसेज करे असांखे ज़रूरु नोट करायो त अव्हांजे इलाइक़े में कहिड़ा फ़सल आहिनि जेके बरसाति ते थींदा आहिनि या जेकॾहिं का पाणी जी सहूलियत अव्हां ताईं आहे त अव्हां हिन वक़्तु कहिड़ा फ़सल असां अव्हांजे इलाइक़े में मौसम जे हवाले सां थियनि पिया, थर जे इलाइक़े में हिन वक़्तु कहिड़ा फ़सल तयारु आहिनि लही चुका आहिनि ऐं पंहिंजो लाड़ आहे उत्तर आहे उत्तर जे इलाइक़े में कहिड़ा फ़सल आहिनि ऐं दरियाई यानि कचो जेको आहे कचे जे इलाइक़े में कहिड़ा फ़सल तयारु आहिनि अव्हां असांखे ज़रूरु ॿुधायो ऐं मैसेज करण जो तमामु आसान तरीक़ो आहे। तव्हां मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, तव्हां उते एल आर के लिखी तव्हां स्पेस ॾेई पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ नालो ऐं पंहिंजे इलाइक़े जे फ़सल जो नालो तव्हां असां ताईं मोकिले सघो था 888-1 ते। जी एफ एम 88 जी आई डी आहे, फेसबुक जो पेज आहे, तव्हां उन ते बि असांजे पंहिंजे सवाल जो सही जवाबु फ़सल जो इलाइक़े जो जेको फ़सल आहे तव्हां लिखी असां ॾे मोकिले सघो था ऐं असांजे कॉल करे बि मालूमात ॾेई सघो था। असांजो नंबर आहे 0332-1322-88।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे बारन के पोलियो खां बचाव जा कतरा जरूर पियारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफ़ती ताकत के वधाइन था इन्हनि जे ख्वाबन के उॾाम ॾियनि था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माज़ूरी
2: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

जी समय ने कुछ दोस्तन असा प्रोग्राम में तवन कयो याने कुछ मालूम दिनी अवां दोस्तन जा कुछ नाला भी जरूर खणंदासी असा अवां के यो बुधाइंदा हलंदासी त जेका हिन वक्त हीअ सीज़न आहे जेका हीअ मौसम आहे त असांजे ख़ासि करे सिंध जे इलाइक़े में कहिड़ा कहिड़ा फसल तयारु थियनि पिया या तयारु थी चुका आहिनि ऐं कुझु मार्केट में पहुची चुका आहिनि त असां अवां ताईं कुझु मालूम ॾींदासीं जेके असांखे दोस्तनि मालूम ॾिनी आहे त असां अवां सां इहा ॻाल्हि कंदासीं जेको असांजो काशे जो इलाइक़ो आहे यानी जाबलू इलाइक़ो ऐं हिन जे वट में जेको पाणी हूंदो आहे नए जो ऐं ॾंढूं तमामु घणियूं हूंदियूं आहिनि वेंदे कंबर डिस्ट्रिक्ट खां बलोचिस्तान खां वेंदे दादू ज़िलो ऐं जामशोर ज़िले ताईं जेके असांजो जाबलू इलाइक़ो आहे त उते फसल हिन वक़्तु या सियारे जे मौसम में त सब्ज़ियूं तक़रीबन सभु थींदियूं आहिनि तमामु घणियूं थींदियूं आहिनि पर हिन वक़्तु जेके असांजे इनखे बि असां फसल चई सघूं था त जेके ॾंढूं आहिनि तलाव आहिनि खॾूं आहिनि त उहे हिन में मच्छी तमामु घणी जेको आहे सो पंहिंजो मरंदी आहे ऐं मच्छीअ जेको कारोबार आहे तमामु घणो हूंदो आहे हिन इलाइक़े में जेको पूरी सिंध ताईं पहुचाइनि था ख़ासि करे लाड़काणा ज़िलो आहे हुन में कश्मोर ज़िलो आहे ऐं कंबर ज़िलो इन में तमामु मच्छी जा घणा जेके तलाव हूंदा आहिनि ॾंढूं हूंदियूं आहिनि खॾूं हूंदियूं आहिनि ऐं सियारे जे टाइम में वरी उते उन्हनि ॾंढुनि में इन्हनि खॾुनि में उन इलाइक़नि में वरी परदेसी पखी बि ज़रूरु ईंदा आहिनि जेके माण्हू शौक़ सां खाईंदा आहिनि ऐं लाड़काणे ज़िले में जेको ॿुधायो वञे थो त सारियुनि जो फसल पंहिंजो हिन वक़्तु बीठो आहे कुझु अञा तयारु न थियो आहे पर तयारीअ में शुरू आहे ऐं कुझु बिह जो फसल हूंदो आहे जेके बिह सब्ज़ी तौरु इस्तेमालु थींदा आहिनि खाधा वेंदा आहिनि ऐं लाड़काणे डिवीज़न में मकई बि आहे ऐं उन जा जेको आहे सो काफ़ी जुअर बि थींदी आहे काफ़ी अहिड़ा जेके फसल आहिनि तयारु थियनि पिया ऐं कुझु जेको सखर डिवीज़न आहे जंहिंमें वाउण थियनि पिया कमन थिए पियो केला ख़ासि करे असांजो खैरपुर ज़िलो जेको आहे ऐं जुअर थिए पई कचे जे इलाइक़े में तिर थियनि पिया ऐं असांजो थर जो जेको इलाइक़ो आहे थरपारकर आहे असांजो थर आहे जिते असांजा मारुणा रहनि पिया सांगीअड़ा रहनि पिया त उते वण जो पंहिंजो ग्वार जो फसल ऐं बाजरी आहे मुङ आहिनि तिर आहिनि चिबड़ ऐं वरी बरसाति जे मौसम में खुंभी बि तयारु निकिरंदी आहे वारियास इलाइक़े में जेका खाधी वेंदी आहे सब्ज़ी तौरु ऐं कुनरी जेको इलाइक़ो आहे थरपारको जो कुनरी मुंहिंजे ख़्याल में तमामु सुठो शहर आहे उते मिर्चनि जी आलमी मंडी लॻंदी आहे पूरी दुनिया जी वॾे में वॾी मंडी थींदी आहे जेकी असां मिर्चनि जी आलमी मंडी चवंदा आहियूं उहो कुनरी शहर आहे ऐं मिर्च उते पहुचंदा आहिनि ऐं मीरपुर ख़ासि जे इलाइक़े मां जेका असांखे दोस्तनि मालूमात ॾिनी आहे उते चमाट जो फसल कमंद मिर्च बसर मकई ऐं मटरी बि ॿुधाई वई आहे त मटरी जो फसल बि उते पंहिंजो आहे ऐं ठटो बदीन में जेको असांजो सारियुनि जो जेको फसल आहे उहो लही चुको आहे ऐं असांजी पूरी सिंध में जेको सारियुनि जा नवां चांवर ऐं जेको चांवरनि जो अटो आहे उहो पूरी सिंध में पहुची चुको आहे इहो असांजो सारियुनि जो फसल ठटे बदीन जे इलाइक़े में लही चुको आहे ऐं असांजे ख़ासि करे दादू जेको ज़िलो आहे उन में चणनि जी पली जेका असां बोड़ तर खाईंदा आहियूं ऐं चणा बि तयारु थींदा आहिनि त उहा फसल बि जेको आहे सो लही चुको आहे मार्केट में पहुची चुको आहे बाक़ी जेके सियारे जे मुंद जूं सब्ज़ियूं थींदियूं आहिनि उनजी तयारी थींदी उनजी पोखाई थींदी पर बहरहाल फ़िलहालु असां जेके बलोचिस्तान कोइटिया खां सब्ज़ियूं अचनि पियूं ख़ासि करे जेके असां सियारे जो पोखींदा आहियूं ऐं पाण खाईंदा आहियूं त उहे पहुची चुकियूं आहिनि मार्केट में काफ़ी अहिड़ा फसल सब्ज़ी जा जेके आहिनि उहे पहुची चुका आहिनि ऐं हाणे अवां दोस्तनि जा नाला जिन असांजो साथ ॾिनो आहे असां हुनजा नाला खणंदासीं अली हसन कनासरो ॻोठु सिराई दुरमंद कनासरो तालुको लाड़काणे खां ॻोठु मसूहब खां डॉक्टर ज़मीर हुसैन मीराणी साईं तारिक मीराणी ऐं फिदा हुसैन मीराणी नौंदरो चौक लाड़काणे खां डॉक्टर शहज़ाद अज़ीज़ सुमरो ऐं नूर कॉलोनी लाड़काणे खां बिलावल खोसो ग़ुलाम अली खोसो ऐं सदा हुसैन खोसो आसिफ अली चाचड़ माहौटा लाड़काणे खां अरशद मीराणी पंहिंजो सखर खां वासिफ अली बुगटी लाड़काणे खां दिलीप कुमार पंहिंजो आहे दोस्त मेघवाड़ थरपारकर खां तमामु सुठी मालूमात ॾिनी पंहिंजे थर जे हवाले सां ख़ालिक लाशारी मीरपुर ख़ासि खां तमामु सुठी मालूमात ॾिनी भाउ रियाज़ जरवार ॻोठु सिंधड़ी मीरपुर ख़ासि खां उन बि सुठी मालूमात ॾिनी भाउ जी वॾी महिरबानी ऐं भाउ असांजो आहे ॻोठु सिराई मोहम्मद नवाज़ धूण खां फ़तेह मोहम्मद कनासरो उन बि तमामु सुठी मालूमात ॾिनी पंहिंजे इलाइक़े जे फसल जे हवाले सां उन सां गॾु आहिनि सैद अहमद शाह ऐं फराज़ अहमद कनासरो फारूक अहमद बेबी शुगफ्ता नाज़ कनासरो ऐं
ॻोठ कंगन खां नादर अली कंगो गुलाब खान कुंभर गुलाम रसूल ऐं शोएब कुंभर अज़ीज़ सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां भाउ बि तमामु सुठी मालूमात ॾिनी फ़सलनि जे हवाले सां ऐं ॻोठ लाल मोहम्मद मरी खां तालिब हुसैन मरी बि कॉल कई भाउ जी वॾी महिरबानी नूर हुसैन तुनियो बदीन खां मोहम्मद खान कुंभार हाले पोटा स्टाप मीरपुर ख़ासि खां ऐं नज़ीर खोसो सुबतपुर बलोचिस्तान खां बरकत जमाली बलोच जाफ़राबाद बलोचिस्तान खां भाउ जी वॾी महिरबानी सभिनी दोस्तनि जी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में तव्हां कयो ऐं असां सां गॾु हुया ऐं हिकिड़ो कलाम आहे ख़ूबसूरत गॾिजी पिया ॿुधूं

जी हा सभिनि शमन अली मीर अली जी हिन कलाम ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक़्तु पहुची थो। पंहिंजी पुॼाणी हयाती बख़ैर इनशाला अवां सां मुलाक़ात ज़रूरु थींदी। तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमत अला जूणे जो खे ॾींदा इजाज़त अला।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Right Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz. A product by
2: Mon sa prana sanje char janan ke qatl kayo ahe insaaf kayo vane.
3: लाड़काने मामा के अफसोसनाक खबर ईंदा हलूं त लाड़काने में हथियारबंदनि जी कार ते फायरिंग थी आहे। पी पुट समेत पंज ॼणा क़त्ल थी विया आहिनि। लाहौरी पाड़े में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदनि कार ते फायरिंग कई आहे। वारसनि जो चवण आहे त असांजो पंहिंजी बिरादरी जे माण्हुनि सां पुराणो ज़मीनी तकरार आहे।

न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां बिल गेट्स जी मुलाकात। पोलियो जे खात्मे माउ ऐं ॿार जी सिहत समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मां पोलियो जे मुकमल ख़ात्मे लाइ हुकूमत जो अज़म वरिजायो। बिल गेट्स वज़ीर आज़म जी क़यादत में पाकिस्तान जे पोलियो ख़ात्मे लाइ कोशिशुनि जी वाखाण कई। वलारियल कश्मीर में मज़हबी सुञाणप खे नुक़सान रसाइण जी कोशिश करे रहियो आहे। नाले मादर छापनि जे आड़ में मासूम कश्मीरनि जो

0: आप सुन रहे थे
1: बलारी कश्मीर में हो रहे तकवाणन समेत भी
0: एटीएन न्यूज।
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सुनती है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-day beauty plan के साथ एलोवेरा vitamins और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके minerals स्किन में fully absorb हो जाए, स्किन को fair और fresh बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, glowing skin का राज। A product of Biocon International Pakistan।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: Express PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: ताल मुंतकिल न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सां बिल गेट्स जी मुलाकात थी आहे. पोलियो जे खात्मे माउ ऐं ॿार जी सिहत समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं. वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मां पोलियो जे मुकमल खात्मे लाइ हुकूमत जो अज़म वरचायो. बिल गेट्स वज़ीर-ए-आज़म जी क़यादत में पाकिस्तान जे पोलियो खात्मे लाइ कोशिशुनि जी वाखाण कई. भारत वलारियल कश्मीर में मज़हबी सुञाणप खे नुक़सान रसाइण जी कोशिश करे रहियो आहे. नाले मातर छापनि जी आड़ में मासूम कश्मीरनि जो क़त्लेआम थी रहियो आहे. नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार जो कश्मीर बाबति OIC जे राबता ग्रुप जे इजलास खे ख़िताब. इसहाक़ डार चयो आहे त वलारियल कश्मीर में साफ़ियुनि ऐं नौजवाननि खे निशानो बणायो पियो वञे. वलारियल कश्मीर में होड़े अॻवाननि समेत ॿिए सियासी क़यादत नज़रबंद आहे. विच ओभर मां जंग जे ख़ात्मे जी उमीद. गॾियल क़ौमनि जे जनरल असेंबली इजलास दौरान ईरान ऐं अमेरिकी वफ़दनि विच में टे कलाक डिघी मुलाक़ात. ईरान आबिना हर्मुज़ खोलण लाइ टे शर्त रखी छॾिया. अमेरिकी सदर ट्रंप जो चवणु आहे त ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राख़्ज़ी जी अमेरिकी ख़ुसूसी नुमाइंदे सां मुलाक़ात थी आहे. मुलाक़ात सुठी रही आहे. जल्द ई ईरानियुनि सां हिकु ॿी मुलाक़ात तय आहे. ईरान जे साम्हूं ॿ दग आहिनि जिन मां हिकु इंतिहाई ख़राबु आहे. ईरान जे मुफ़ाद में आहे त उहो कंहिं मुआदे ते पहुचे. ईरानी मीडिया मूजिबि अमेरिकी दरख़्वास्त ते वफ़दनि में मुलाक़ात थी. अब्बास राख़्ज़ी अपना हर्मुज़ खोलण बाबति शर्त अमेरिकी नुमाइंदो आॾो रखी छॾिया आहिनि. ईरानी शर्तनि में अमेरिकी नाकाबंदी ख़तम करणु, मंदद असासा बहाल करणु ऐं समूरनि मुआज़नि ते ईरान ख़िलाफ़ जंग जो ख़ात्मो शामिल आहिनि. पाक फ़ौज कुरम सेक्टर मां फितना ख़ारिजन मुल्क में दाख़िल थियण जी कोशिश नाकाम बणाए छॾी. अफ़गान तालिबान पोस्टूं छॾे फ़रार थी विया. सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि नाकामी सबबि अफ़गान तालिबान पाकिस्तानी चौकियुनि ते फायरिंग कई. सिक्योरिटी फोर्सिस जी जवाबी कार्रवाई दुश्मन खे भॼण ते मजबूर कयो. पाकिस्तान सऊदी अरब सां ख़ुदमुख़्तियारी सलामतीअ मुक़दस हंधनि जे तहफ़ुज़ लाइ गॾु आहे. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ सऊदी अरब जे क़ौमी ॾींहं जे मौक़े ते चयो त हुसैन जे मके ते हमले जी मज़म्मत कयूं था. हुरमैन शरीफ़ जी सलामतीअ खे को बि ख़तरो समूरी दुनिया जे मुसलमाननि जे जज़्बनि खे छियो रसाए थो.

0: धिमी वींदड़। कराची खां दादू तरफ वींदड़ तेज रफ्तार वेन कल्टी औरत नायला फौत, अठ ॼणा जख़्मी। घोड़ाबारी में कुकड़ियुनि सां भरियल तेज रफ़्तार मज़दा वाह में किरी पई। हादसे में अनवर जोखियो ऐं अहमद जोखियो हयाती विञाए वेठा, चार ॼणा ज़ख़्मी।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: हम छम छम किताबे लेके निकले हम, अमीन कहाना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

वक्त हालतूं ऐं वाकिया मुसलसल तब्दील थींदा रहनि था। मुस्तकिल हुजे थी सिर्फ़ तब्दीली। हर पल तब्दील थींदड़ वाकियनि जा नवां पहलू वसी ऐं गहरो नुक़्ता नज़र सिर्फ़ इनसाइट विद नाज़िया मीर सां।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सगे थो। इन्हीं करे जड़ें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: This program is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है फिर क्यों परेशान हो तुम्हारे पास तो अल्लाह है सिनिप दिल तमाम खूबसूरत मासूम ही सुने समात मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम दुआओं के समंदर है चाहतों की बारिश और आजवल खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आसी कल सुबह से शाम तक दिन से रात तक नींद से जाता समय से आसमान तक जिंदगी से मौत की सांस तक से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे सो आमीन या रब्बुल आलमीन जी आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातिली नूरियाबाद और जनाब लारकाना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें की जाएंगी और बातें भी जनाब इस तरह से की जाएंगी ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि मार्केट में आप लोगों के लिए अब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी इन हो चुके हैं क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि भाई आप लोगों के जहनों में ये चीज तो जरूर बिठा देगी कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना सिर्फ आपकी खूबसूरती के लिए है बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत के लिए भी है और आपके चेहरे को हमेशा के लिए ब्यूटीफुल प्यारा और पुरकशिश बनाने के लिए भी है सोच रहा आप जब भी खूबसूरती की बात आए और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का नाम ना आए तो ये तो भाई फेयर नहीं होगा अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करने वाले हैं या फिर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो भाई ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए प्रोग्राम में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में फन होगा प्रोग्राम में बातें होंगी प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट होगा और इसके साथ साथ आप लोगों के साथ खूबसूरती की बातें की जाएगी यानी कि खूबसूरती की दुनिया में आप लोगों को कहते हैं वेलकम इन खुशामदी हाँ जी आपकी मोहब्बत और समात हो चाहतूंगा बेहद वाला शुक्रिया और साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं सो लिसनर्स फॉर इजंट इट द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान नाम तो सुना ही होगा तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाएंगे जनाब बिल्कुल आप लोगों को ऐसा ब्यूटीफुल बनाएंगे कि फिर आप कहेंगे कि भाई किसी और प्रोडक्ट पे तो हमारा दिल ही नहीं लगता क्योंकि हमारा दिल तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेकर गए हैं बिल्कुल जी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की क्या ही मैं बात बताऊं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना वो इस तरह से तैयार किए गए हैं कि आप लोगों की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम तो बिल्कुल करेंगे लेकिन साथ साथ आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी करना बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ही काम है तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स बहुत सारी बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूंगी और पूरे प्रोग्राम में अगर बात की जाए प्रोग्राम में आपका हमारा साथ होगा जनाब ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक पूरे 2 घंटे हम आप लोगों के साथ मौजूद होंगे जनाब बहुत सारी बातों के साथ बहुत सारे खूबसूरती के राजों के साथ ओके जी तो जरा आप अपने हाल चाल बताते जाइए सो डियर लिसनर्स अंत की हालत कैसे ही आपकी हालत उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनल यहां पर हमने एंट्रियां मार ही ली हैं आपको पता है ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारे साथ रहने वाला है हां जी पूरे 2 घंटों में आप लोगों के साथ जो हम जिक्र करेंगे वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का होने वाला है और यहां पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए शामिल है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन ब्यूटी सोप ये 2 प्रोडक्ट्स अभी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुके हैं अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले या फिर डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश का यूज करने वाले तो हमारे साथ शेयर कीजिए कौन सी सी बातें जो कि भाई आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि भाई जब तक आप चीजों के बारे में ढूंढ नहीं लेते उन तमाम चीजों के बारे में जो कि भाई आप लोगों के चेहरे के लिए सही साबित होने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भाई अपने चेहरे से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें लगा रहे होते हैं यूज करे होते हैं जिनका उन्हें असर तो नहीं मिल रहा होता लेकिन उल्टा उनके चेहरे पर जो है ना वो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि हमारे चेहरे की खूबसूरती में जो हमारे चेहरे की जो खूबसूरती है वो सिर्फ बढ़ती रहे तो ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन हो सकता है जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश का यूज करने वाले तो बताते हैं जी सब कुछ बताते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम भी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए
आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून. साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्के संभालने का काम करेगी भाई जान ये सिद्रा. तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के संभाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं. सबसे पहले हम सुनते हैं जी प्रोग्राम के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी नात, बहुत प्यारी सी नात के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं. उसके बाद हम जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है. तो आप सुन रहे हैं Whitish and D Skin Beauty Show, sponsored by D Skin Beauty Products. लगाइए और खूबसूरत हो जाइए और जनाब हमारा साथ दीजिए पूरी 3 बजे तक.

0: बिल्कुल जी, क्या बात है क्या बात है. असली गिलोर हर दिन का शोगर अभी हासिल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करना पड़ेगा. ऐसे कैसे आपको मिलेगी वो खूबसूरती जो कि आप हासिल करना चाहते हैं. थोड़ी सी मेहनत तो जरूरी होती है जनाब. अगर आप भी हसीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, हमेशा खूबसूरत रहना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज तो करना ही पड़ेगा. और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने आप लोगों के लिए क्या ही कमाल के प्रोडक्ट्स हैं जनाब, जिनमें डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको मिल रही है, डी स्किन फेस वॉश आपको मिल रहा है. तो आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं मुझे जल्दी से बताइएगा, अपने होने का एहसास दिलाइएगा. साथ ही साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो किस तरह से आप हमें ज्वाइन करने वाले ये सारा सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं. और साथ ही साथ जो चीज सबसे ज्यादा बताने वाली वो ये कि भाई आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है. तो आज के प्रोग्राम के अगर सवाल की बात की जाए तो आज मेरा आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप सारे लोग मुझे बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पीने वाला मुल्क कौन सा है. हाँ जी, दुनिया में सबसे ज्यादा चाय जो है वो कौन से मुल्क में पी जाती है. जो टी लवर्स हैं क्या वो जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा चाय जो है वो कौन से मुल्क में पी जाती है. और इसका जवाब अगर आप मुझे देना चाहें तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए जनाब. और ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस, दीजिए अपना नाम, लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा. और आइए हमारे पेज पर, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. बिल्कुल जी, ये तीनों काम कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए. और इसी के साथ साथ बताइए आप हमारे साथ मौजूद प्रोग्राम का हिस्सा ही सुना और हमारी प्रोग्राम की रौनकें तो सही जानते हैं आप लोगों की वजह से होती है. तो बिल्कुल जी, प्रोग्राम में रौनकें बढ़ाइए और अपने होने का एहसास दिलाइए और मुझे बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा चाय कौन से मुल्क में पी जाती है. और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि क्या आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है. क्योंकि अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाते हैं और वहां से मालूमात लेते हैं कि भाई जान यहां पर बताएं जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है या फिर नहीं, क्योंकि कल ही बिल्कुल ये बात हुई थी कि भाई अगर आप जाते ही अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर तो वहां पर अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल नहीं होती तो दुकानदार जो होता है ना वो आपको कोई भी प्रोडक्ट पकड़ा देता है और वो कह देता है कि भाई ये हाँ ये लगाइए. क्योंकि हमारे कुछ जो लिसनर्स ना वो बड़े मासूम है, यानी कि वो गोठाना माण्हू आहे, तो उन्हनि खे अगर इन चीज जे बारे में खबर ना आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहिड़ी क्रीम आहे या डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे डब्बी ते कहिड़ो फोटो लॻियल आहे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे डब्बी जो कलर कहिड़ो आहे, अगर इहे चीज़ूं तव्हांखे ख़बर न आहिनि त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे तव्हां स्कीम जो हिसो बणजी सघो था ऐं तव्हांखे बि ठगियो वेंदो ऐं तव्हांखे बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे नाले सां काई बि क्रीम ॾेई छॾींदो दुकानदार. त इन्हनि चीज़ुनि खां अगरि तव्हां बचणु चाहियो था, तव्हां सही प्रोडक्ट परचेज़ करणु चाहियो था, त तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा रहो ऐं पूरे प्रोग्राम में तव्हांखे न सभु चीज़ूं ॿुधाईंदमि त तव्हां कहिड़ियूं कहिड़ियूं चीज़ूं फॉलो करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे परचेस करे सघो था ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करण खां फौरन बाद ई तव्हांखे कहिड़ा रिज़ल्ट मिली सघनि था. सो इहे कुझु ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि जेके तव्हांजे लाइ ज़रूरी हूंदियूं आहिनि ऐं तव्हां ॼाणो त ॾाढो बहितरु हूंदो आहे, तव्हांखे आसानी थी वेंदी आहे. सो बिल्कुलु तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो पिया कोन, मूंखे ॿुधाईंदा हलो. ऐं तव्हां अगरि इस्तेमालु करणु चाहियो था त तव्हां इहो बि मूंखे ॿुधायो. उन खां अलावा अगरि नंबर्स तव्हांखे ॿुधाया वञनि प्रोग्राम जे अंदरि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल करायो तो नंबर तव्हां लाज़मी डायल कयो. नंबर ते तव्हां राबितो करे सघो था, कॉल कयो या वरी मैसेज कयो, भाई साहब खे ॿुधायो, तारिक भाई भाई तव्हां जेको आहे कॉल अटेंड कंदो ऐं तारिक भाई खे ॿुधायो त बाबा असां फलाणी जॻह तां प्रोग्राम ॿुधूं था ऐं किथे किथे तव्हांजे लाइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराई वञे त हू तव्हांजे लाइ अवेलेबल कराए छॾींदा. ठीक हो गया, और कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं. ये आसानियां आप लोगों के लिए हमने तो कर दी है, लेकिन अब थोड़ी सी आसानियां हमारे लिए भी कर दीजिए. डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए और साथ साथ हमारी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए. अच्छा, यहाँ पर आप लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं. नसीर खोसो भाई हमें बलूचिस्तान से सुन रहे हैं, खुश आमदीद कहते हैं. लिखते हैं कि नादान इंसान 100 साल जिंदगी के लिए जी ले लेकिन लगन से मेहनत करता है मगर हजारों साल कब्र में पड़ता है हमेशा, अगर कोई फिक्र नहीं उसे. या गाल तो हम बिल्कुल भली करे चली आए. और महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम आरजे, आपकी अभी सर मॉर्निंग हुई है. चलिए जी, आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है. और इनका अलावा फहीम शेख हमें सुन रहे हैं, कहते हैं टुटरी टुटरी जुड़ी त ॾिस ज़िंदगीअ ॾे मुड़ी त ॾिस हज़ार लख करोड़ छॾे बणजी हिकु बुड़ी त ॾिस वाह वाह वाह वाह बहुत बढ़िया वालेकुम अस्सलाम अलैहि सलाम अदर अदा कहिड़ा हाल आहिनि हाल पलाल आहे ख़ुशि आयो सफ़ा चा को सिले कला मस्जिद डबी हाल असांजा पलाल कोलिन अलहमदिल्ला असां ठीकु ठाक आहियूं मस्जिद में आहियूं ऐं ज़िंदगी खे फुल ऑन जीअण वारा आहियूं की भई असां बि अची वियासीं प्रोग्राम त लाजवाब आहे हमेशह जीअं थैंक यू सो मच प्यारा भाउ तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई कोन लगाई है इंडी इस्तेमाल करने के बारे में छा सोचो है और फरवा कहती है अस्सलाम वालेकुम गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे आप ही आप कैसी हैं तबीयत कैसी है होप यू आर फाइन एंड वेरी वेल यस आई एम गुड आप बताएं कैसी हैं अली रजा लगारिया में सुन रहे हैं गोठ जाम खान लगारी से कहते हैं सिस्टर सिद्रा वालेकुम अस्सलाम सिस्टर आप कैसी है शो तमाम नाइस है सॉन्ग असा सदाई दरिया वांगुर चाढ़ में भाई मुमताज मलई और प्ले करना डेडिकेट टू अजहर लगारी आकिब लगारी आरजी गुलाम मुस्तफा टालपुर इमाम बख्श खोखर एंड खालिक लाशारी जी नाले ओके आई ट्राई अच्छा किशोर भाई आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद कहाँ थे इतने दिन में वैसे आज सोच रही थी कि आज याद करूंगी किशोर भाई कारे घूमती हुई आज तो आप खुद ही शामिल हो गए चले आपको वेलकम कहते वैसे बताएं कहाँ गुम हो चुके थे तबियत तो ठीक है ना या है ना मौसमी बुखार तहांखे भी न छड़ियो आहे अच्छा उनके अलावा अख्तियार अली गब्बर हमारे साथ है अख्तियार अली गब्बर भाई है विलेज मोहम्मद उस्मान गब्बर से अख्तियार अली गब्बर सुलफकार अली गब्बर अली दोस्त गब्बर प्रोग्राम बेस्ट थैंक यू पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए अच्छा उनके अलावा बतूल हमारे साथ है बतूल लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम आई एम बतूल फ्रॉम सिटी मटियारी से कल मैंने अम्मी के साथ हैदराबाद रेशम बाजार से एक बड़ा सा रेडियो खरीदा लेकिन जैसे ही आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ आपकी प्यारी सी आवाज ने हमारे रेडियो के स्पीकर अच्छा चले नुकसान
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by अगर खूबसूरती चाहिए तो आप

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: अंत सफेद मोती का ऑपरेशन बजरिया लेजर फेको काले पानी का इलाज और ऑपरेशन पर्दों की बीमारियों का इलाज और आंखों की दीगर बीमारियों का इलाज करते हैं रोजाना सुबह 10 बजे से 1 बजे तक शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक इतवार तातील है और जुम्मे को ऑपरेशन किए जाते हैं एड्रेस सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान लेजर आंखों का अस्पताल सर सैयद रोड गरीबाबाद मीरपुर खास फोन नंबर 03032617077
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का हो चुका है सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस जिम्मेदारी हम सब की है हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी
2: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं

करे सही तरीके से एंटी स्किन ब्यूटी क्रीम जी जांच करे वो ही तां परचेस कयो छो त अजकल स्कैम डाढो थे पयो मार्केट में तमा के दुकानदार डाढो ठगिन पया त तमा थोड़ा अगर मासूम आयो तमा गोठाना आयो त तमा के थोड़ी खबर हो जे बाबा त तां केड़ो प्रोडक्ट वठन वन्यो था ए ता उन के बुधायो दुकानदार के भाई साहब ने दिस असा के खबर आए त डी स्किन ब्यूटी क्रीम केड़ी आए ए असा डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेस करे वेंदासी त तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में मालूम आ जेका भी तमा के दींदी आ उन ते गौर कना कयो ए डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो त ता के खबर पए बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाह जो प्रोडक्ट आ है और क्या ही बात है अच्छा हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में थोड़ी सी और आप लोगों को मैं जरा डिटेल बता दी चलूं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये जनाब एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में इन हो चुका है जो कि भाई सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको बड़ी अच्छी बड़ी कमाल के रिजल्ट्स दे रहा है तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमें क्विक सा रिजल्ट मिल जाए और ऐसा रिजल्ट जो कि भाई कोई नुकसान भी ना पहुंचाए क्योंकि जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं कोई भी नाइट क्रीम लगाते हैं और उनका ये दावा होता है कि भाई फलां दिनों में आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएंगे तो उनके अंदर बड़े केमिकल हार्श से केमिकल डाले जाते हैं तो उसका जो रिजल्ट आपको मिलता है ना जल्दी में वो मिल तो जाता है लेकिन उसके बाद आपके चेहरे पर बड़े अच्छे खासे साइड इफेक्ट्स आपको मिल रहे होते हैं तो लेकिन आप ये सोचेंगे कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आपको इतना जल्दी रिजल्ट क्यों दे रही है तो जरा उसकी जानिब भी आ जाते हैं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को सिर्फ दो रातों में यूज करने से आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना वो इतने अच्छे क्यों मिल रहे हैं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन जो है ना इनकी एडिशन की गई है और विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स के साथ साथ अल्फा आरबोटीन है कॉजिक एसिड है ग्लूटाथायोन है ये चीजें बीट के गई लेकिन जनाब यहाँ पर शो स्टॉपर जो है वो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स हैं क्योंकि विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स जो है ना इन की जरा बात आप लोगों को बता दी चलूं कि ये जो दोनों चीजें हैं ना ये जो महंगे महंगे फेशियल्स होते हैं ना जो बड़े हजारों में हो रहे होते हैं आपके चेहरे पर तो उन महंगे महंगे फेशियल्स के अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स ऐड किए जाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से रिजल्ट्स मिल सके लेकिन यहाँ पर अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जनाब 2-in-1 फार्मूला बन चुका है यानी कि एक नाइट क्रीम तो है लेकिन आपको जो रिजल्ट्स देगी वो बहुत अच्छे खासे जो है ना फेशियल्स कराने के बाद जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं ना बिल्कुल वैसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से बाबा मैजिक थी वेंदो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो सिर्फ बर रातियों तव्हां ॾिसंदा तव्हां खे केॾा जबरदस्त रिजल्ट मिली चुका आहिनि ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कोई भी साइड इफेक्ट न आहे छो त ही मेडिकेटेड फार्मूलो आहे ऐं हुन खां अलावा तव्हां सोचींदा हूंदा त बाबा हाणे हिन में माइक्रो बीट्स बि आहिनि विटामिन ई बीट्स बि आहिनि अल्फा आरबुटीन बि आहे कोजिक एसिड बि आहे ग्लूटाथायोन बि आहे त इहे सभु चीज़ूं ॿुधी करे साउंड्स ईअं महसूस थिए थो त भई ॾाढो महांगो प्रोडक्ट हूंदो त इहा बि चीज़ तव्हांखे ॿुधाईंदे लाइ हीउ एतिरो महांगो प्रोडक्ट कोन्हे को मुनासिब क़ीमतुनि में तव्हांखे मिली रहियो आहे रेगुलर जीअं तव्हां पंहिंजा इलाही सारा पैसा नाइट क्रीमनि ते वेस्ट कंदा आहियो न उन्हनि खां त हज़ार गुना बहितर चवंदा आहिनि न सस्ता रोए बार बार ऐं महांगा रोए हिकु बार उहा कार अथव एॾो महांगो न आहे त तव्हांखे मतिलबु तव्हां अफोर्ड ई न करे सघो मुनासिब क़ीमतुनि में तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही आहे ऐं तव्हां वठो बाबा उहे जेके तव्हां बेकार नाइट क्रीमूं यूज़ कयो पिया न उन्हनि खां त हज़ार गुना बहितर प्रोडक्ट आहे ॿियो मेडिकेटेड फार्मूलो आहे ऑल स्किन टाइप जे लाइ तव्हां सब माण्हू लगाए सघो था मर्द हज़रात ख़वातीन हर कोई इस्तेमाल करे ऐं पंहिंजे खूबसूरती जी हिफ़ाज़त कयो बाबा ऐं तव्हांजे ऐं खूबसूरती जे विच में सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो जेको आहे न हथ अथव सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तव्हां बि इस्तेमाल करे ॾिसो ऐं पंहिंजे खूबसूरती खे ज़रा सुञाणियो बाबा सुञाणियो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइण चाहियो था त तव्हांखे डायल करणो आहे 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 25 970 ही तारिक भाई जो नंबर आहे तारिक भाई मतलब वेठो हूंदा मोबाइल जंहिंमहिल कॉल कंदा न त तव्हांजी कॉल जेका रिसीव थी वेंदी ऐं तव्हांखे रिस्पॉन्स मिलंदो ऐं तव्हां किथे किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराइण चाहियो था उहो तव्हांखे सॼी डिटेल्स तव्हां हुनखे ॿुधायो तव्हांखे ॿुधाए छॾींदो त किथे किथे मिली रही आहे या वरी किथे किथे अवेलेबल कराइण जी नीड आहे ऐं हुन खां अलावा ॿियो नंबर आहे अगरि मतिलबु कॾहिं तारिक भाई जो नंबर बंदि हुजे या न रिसीव थिए छो त हर को माण्हू कमकार में थोरो बिज़ी बि हूंदो आहे त तव्हांखे हीउ ॿियो नंबर ॿुधायां थी इन नंबर ते तव्हां राबितो करे वठिजो ऐं नंबर आहे 03-27-38-43-09 ॿुड़ी 332 73-84-309 तव्हां हिन नंबर ते बि राबितो करे सघो था ऐं इहे नंबर्स तव्हांजे आसानी जे लाइ आहिनि जीअं तव्हां परेशान न थियो ऐं बसि तव्हां नंबर ते राबितो कयो ऐं तव्हां उन्हनि खां डिटेल्स वठो भाउ असां किथां परचेस करे सघूं था या फलाणी जॻह ते कोन थी मिले डी स्किन ब्यूटी क्रीम हू तव्हांखे गाइड करे सघनि था ऐं छा प्राइस वग़ैरह आहे तव्हां उन्हनि खां मालूमात वठी सघो था ऐं किथे किथे फेस वॉश अञा ताईं अवेलेबल न आहे थियो त तव्हां उहो बि उन्हनि खे ॿुधायो त हू तव्हांखे ॿुधाए छॾींदा त किथे किथे फेस वॉश तव्हांखे मिले थो या वरी किथे किथे अवेलेबल करायो वञे ओके सो ही कुझु ॻाल्हियूं असां तव्हांखे पूरे प्रोग्राम में ॿुधाईंदासीं
थी तव्हां जी भलाई जे लाइ आहिनि बाबा तव्हां हिक मर्तबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे लाज़मी तव्हां इस्तेमाल करे ॾिसो तव्हां खे यकीन ॾाढो सुठो रिज़ल्ट मिली वेंदो ऐं न मिले त तव्हां पोइ मूंखे चइजो उन खां अलावा अॼु जो जेको मां वा खां सुवाल पुछियो आहे सुवाल इहो आहे जनाब त दुनिया में सभ खां वधीक चांहि जेका आहे उहा कहिड़े मुल्क में पी वेंदी आहे चांहि जेका आहे उहा किथे सभ खां वधीक पी वञे थी इहो तव्हां मूंखे ॿुधायो था इन खां अलावा तव्हांजा फीडबैक्स आहिनि तव्हां सां सुहिणियूं सुहिणियूं ॻाल्हियूं कंदासीं ऐं तव्हांजा जेका सुहिणा सुहिणा फीडबैक उन्हनि खे शामिल प्रोग्राम कयूं था पर हीउ जेको गानो हलायो आहे न अचो त पहिरियों गानो ॿुधूं था

ओके जी, क्या बात है, यहाँ पर आपके कमेंट्स ऊपर भी चलते जा रहे हैं, तो जरा मैं जल्दी जल्दी आपके कमेंट्स जरा रीड करती जाऊँ। यहाँ पर आप सुन रहे हैं जनाब टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में एक कान से सुन के दूसरे कान से मत निकालिएगा, क्योंकि ये बड़े कमाल का प्रोडक्ट है और बड़े काम का प्रोडक्ट है, तो जरा यूज करके देखिएगा। और साजिद अली हमारे साथ मौजूद है, हिदायतुल्लाह अहमदानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी, और आपको भी वेलकम कहा जाता है। उसके साथ साथ हमारे साथ हैं जी, अच्छा हिदायतुल्लाह आपने टॉपिक का जवाब दिया है, सही हो गया। और चाचा खालिद कहते हैं कि कैसी है वेगी बैटरी, चाचा को दूल्हा बना दिया आपने, कल रिपीटेड शो सुना था मैंने, अब तो चाचा ना करें, चाचा ना करें। वैसे बस आपकी दुआएं चाहिए मुझे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और दर्दी दिल हमें सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम, चंदा जाने बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कैसी है स्वीटी। और कहती है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, जो वक्त गुजर जाए उसे सोचकर खुद को मत तोड़ो, कभी लोग और कुछ लम्हे सिर्फ सबक देने के लिए आते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा साजिद भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है। फहीम भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ओके हो गया। और फहीम भाई कहते हैं कि सर खालिद शादी मुबारक हो, नई जिंदगी मुबारक हो, सदा मुस्कुराते रहो। भाई और कोई नहीं, बस आंटी के साथ दोबारा से जरा चाचा की शादी करा दी हमने, तो ज्यादा ऑफेंड होने की जरूरत नहीं, मतलब हमारी आंटी के थोड़ो गुस्से अच्छी बने। अच्छा बशीर अहमद बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है, बशीर भाई आपको वेलकम हो गया। और किशोर भाई लिखते हैं कि आपके सवाल का जवाब, और अगर वाकई ऐसा भी हो सकता है। और इकबाल आशारी कहते हैं जो सोनू खान लाशारी पीरपुर खास से बाजी सिद्रा टॉपिक, ओके ओके जी, सब भाइयों को वेलकम हो गया। और साथ साथ जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा। गुलाबा जो गुल कहती है अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू। और जी वासु भाई भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, अदी सिडो असा भी अच्छी वैसी तमाम जी प्यारी महफिल में, थैंक यू सोना भा। चाचा कहते असा की सबनी ठगियो आ डी स्किन क्रीम वारन ठगियो अच्छा थियो ना बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम वारन ठगींदा पर दुकानदार तांके ठगींदा, छो तो तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करण वञो था वरी दुकानदार तांके को बियो प्रोडक्ट ॾेई छॾे थो, त तव्हां खे इन मामले में ॾिठो वञे त तव्हां स्कैम जो हिसो थी वञो था, सो तव्हां थोरो बचो इन चीज़ुनि खां ऐं तव्हां इस्तेमालु कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं सही तरीक़े सां सही तव्हां खे ॻाल्हियूं ख़बर हुजनि की तव्हां वञो त सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ डी स्किन ब्यूटी क्रीम ई परचेज करे अचो। अच्छा उन खां अलावा हमारे साथ हैं जी, अच्छा अब्दुल रजाक भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अब्दुल गफार भाई हमारे साथ हैं, लाजवाब शो, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। और मेलसी से भी आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, तो जाइएगा परचेज कीजिएगा। रशीद खोसो भाई हमें हैदराबाद से सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और जी एस एन अरबाणी आ चुके हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम अदर, ओ माय फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान जी, कैसी हैं आप और कैसा रहा कल का दिन आपका मुस्कान जी? कल मैंने छुट्टी की, कल आपने छुट्टी की लेकिन कल इतनी ज्यादा रश थी कि भाई मेरा दिमाग ही घूम गया था। चले अच्छा था, वैसे आपको रश में मजा नहीं आता था ना, तो सही है, बहुत बढ़िया हो गया। और फरवा आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है जी। जैन अली लिखते हैं कि और फिर मुझे अपना आदि बना के बाद उसे याद आया कि उसे मोहब्बत तो करनी ही नहीं थी, अरे वाह क्या बात है। और किशोर भाई कहते हैं कि अदा में छुट्टे छोटे मसलों की वजह से शो ना छोड़ो आए हाँ, पर अफसोस से कहना पड़ रहा है मेरे प्यारे चाचू मुझे छोड़कर चले गए, काफी अफसोस हुआ, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। और हाँ मुझे पता चल गया था कि भाई कुछ तो हुआ ही होगा जब भी आप प्रोग्राम में नहीं आ रहे, ओके। और बतूल आपका गाना हम लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मुजाहिद बोजार कहते हैं हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम बरेरी सिद्रा जी, कैसी आप, तबीयत ठीक है आपकी, क्या याद करोगी मैं आपको आज कराची से रहा हूँ, क्या बात है जी, उतान रोसान असान जिंदगी भर नरसानी दासी आई। तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करे ॾिसजो, ठीकु आहे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर से अगरि कोन थी मिले, फर्ज़ कयो नथी मिले, त जेको नंबर तव्हांखे ॿुधायो आहे प्रोग्राम में उन नंबर ते तव्हां राबितो करे वठिजो। ऐं जॾहिं तव्हां नंबर ते राबितो कंदा आहियो न, त तव्हांखे ॿुधायो वेंदो आहे त किथे किथे अवेलेबल आहे ऐं किथे किथे अवेलेबल कराइण जी नीड आहे।

बिल्कुल जनाब, पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करती रहिए। अबरो रहमत अली हमारे साथ हैं, गुल मोहम्मद पतूजो, बरकत अली पतूजो, रहमत अली पतूजो, और कहते हैं माहे माकोल से आपको, अच्छा हमारा शो सुन रहे हैं और कहते हैं आपको सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको भी। और साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ है, कहते हैं डी स्किन लगायो नाइस आहे, वाह सही वाह वाह सही वाह। यो तो जेके जेके डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं था बाबा, वो यो चवन था तहां भी हणो बाबा, तहां भी सोना थियो, छोटा हर के जो हक आए खूबसूरत थियण। आई साजिद भाई हमें सुन रहे हैं फ्रॉम डी आई जी ऑफिस लाड़काना से, साजिद बाबा का गाना सुनाते हैं आपको, बहुत शुक्रिया।

ओके जी, रमजान भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम वीआईपी है, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। कहते हैं कि कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मिजाज में, के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरे जबीन नियाज में। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। और हिदायतुल्लाह कहते हैं कि वैसे मुझे तो ये पता भी नहीं कि डॉक्टर कैसे देखते हैं, आइए मासूम अच्छा डॉक्टर कैसे दिखते हैं ये भी इनको पता नहीं है। पूरी जिंदगी में आप ने कभी डॉक्टर को नहीं देखा, सच्ची बताए मुझे।

साइकिल सवार हथियार बंदन कार ते फायरिंग करे जमीनी तकरार तां चइनि भाइरनि खे कतल कयो आहे। पुलिस मौजूद फायरिंग में अलावर आयो ऐं संदसि भाउ मंसूर खोखर, अली शेर खोखर ऐं कार ड्राइवर गुलाम मोहब मंगणे जो मारिजी विया आहिनि। हिकु औरत ज़ख़्मी थी आहे। वारसनि जो चवणु आहे त पंहिंजे ई बिरादरी जे माण्हुनि ज़मीनी तकरार तां चइनि ॼणनि खे क़तल कयो आहे। एस एस पी लारकाणे जो चवणु आहे त ॿई धुरियूं पंहिंजी बिरादरी जे माण्हुनि जे क़तल में मुलविस रहियूं आहिनि। वॾे वज़ीर बरादरी शाह पारां वाक़े जो नोटिस वरितो वियो आहे। आई जी सिंध खां रिपोर्ट तलब कई वई आहे। जवाबदार गिरफ़्तार करण जो हुकुम ॾिनो आहे। नायब वज़ीर आज़म

0: वतन की मोहब्बत से सरशार सरमस्त आवाज से
1: तुम और बोलो
0: जिए FM 88
1: सिंध की आवाज।

ओके जी ओके ॾाढो भलो गानो ॿुधूं था अनवर भाई हमारे साथ मौजूद हिते भली करे आया वेलकम तव्हां जे अचण सां रौनक वधी वई मां तव्हां जे अचण सां बि रौनक वधी वई जियो करे से और आपने टॉपिक का जवाब दिया अनवर भाई बहुत बढ़िया हो गया और मोहम्मद समान भाई क्या कहते हैं यो मुखे लॻे थो तव्हां थोरी थोरी टोक कई आहे मन हाणे वॾा थी विया टोक बि करे वञो था मोहम्मद भाई मोहम्मद समान भाई सुधर जाए अच्छा मुलाई मुजाहिद बोजार कहते ओ सिड्डो टॉपिक मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा चाय चाइना में पी जाती है क्या बोलती तू मैं एग्री नहीं करती आपसे दर्द दिल कहती है तभी तो मोबाइल को कान से लगाकर सुन रही थी चंदा कान की बातें बता रही अच्छा काम की बातें बता रही थी मैंने कहा ये काम की बातें कान की बातें कौन सी होती सही सही हाँ जी मैं सारी काम की बातें बताती हूँ आप कान लगा के सुना करें रिजवान अली हमारे साथ मौजूद है रिजवान भाई आपको वेलकम कहते हैं थैंक यू हम कैसे माने अलीशा क्वीन कहती है कि खुद को किसी की अमानत समझकर हर वक्त वफादार रहना मोहब्बत है ओ या गाल कही ना सोनी और कहती है कि मैं तुम्हें चांद कहूँ ये तो है मुमकिन मगर लोग तुम्हें रात भर देखें ये मुझे गवारा नहीं वाह वाह वाह वाह इसे भी कहते हैं मोहब्बत क्या बात है ओके जी फहीम भाई कहते हैं कि अदा बस केतरा मानू हाँ भाई तव्हां जहिड़ो सादो माण्हू असां कोन ॾिठोसीं बाक़ी पंहिंजी पूरी लाइफ में अखाच लाइफ में नहीं देखा भाई तव्हां ईअं ई हमेशह सादा रहिजो ठीकु आहे तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा रहिजो और अलीशा कहती है कि मेरे प्यारे भाई सदाम हुसैन को सलाम बोले सिस जी जी बिल्कुल सलाम और रिजवान कहते हैं कि मेरे नाइस हो आपका प्लीज सॉन्ग सुनाओ आपको बहुत आपकी मेहरबानी होगी जी जी मां ॾिसां तव्हांजो गानो हलाए वठूं था और कहते कि काश तो मूंखा पुछी तोखे छा खपे मां हथ हथ ते रखी चवां तुझो साथ खपे वाह वाह वाह वाह अच्छा मुजाहिद मलिक कहते हैं कि सिडो डी स्किन फेस वॉश नहीं मिल रहा GTK में आज तो गाना प्ले करो शाहिद भंगवर का अल्लाह मेली मैयारा मां हलायां थी बिल्कुल तव्हां जे लाइ गानो ऐं तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश अगरि नथो मिले त तव्हांखे जेको नंबर प्रोग्राम ॿुधायो आहे न नंबर ते हिकु दफ़ा तव्हां राबितो करे वठिजो ठीकु आहे जॾहिं तव्हां राबितो कंदा त तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते ईज़ीली डी स्किन जो फेस वॉश हुजे या डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे अवेलेबल थी वेंदी ठीकु आहे अच्छा एसन कहते हैं शो भी मैंने रात को सुना था वैसे मजा था कल वाले शो में हाँ कुछ ज्यादा ही वाली एनर्जी थी अच्छा फरवा आपने हमारा शो लाइक और शेयर कर दिया बहुत शुक्रिया नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमें सुन रही मटियारी से ओके भाई को वेलकम कहते हैं दर्द दिल कहती है कि चंदा अब वो सॉन्ग भी प्ले कर दो एंजल वाला जिसे सुनकर लगता है हवा में उड़ रही हूँ हाँ हाँ लगाया थी लास्ट बताई थोड़ा सबर कर अच्छा उन खां अलावा पहलाज राय कहते हैं अच्छा पहलाज भाई आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है बहुत शुक्रिया थैंक यू किशोर भाई कहते हैं तू जो हिसो गाया बा चरी लगी अथो वाकई ये तां सही था जो छा कयूं ॿुधायो त एसन कहते हैं आज तक मुझसे तो आपने ये नहीं पूछा कहाँ थे पूछा है भाई बहुत मर्तबा पूछा है आप भुलक्कड़ हो गए आजकल लग रहा है मुझे गजनी गजनी जब बहुत दिनों के बाद आते हैं तो पूछती हूँ कहाँ थे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे थे नहीं और कहते मुझे ये फील होता है न तां यो फील बिल्कुल भी न कयो और जेन कहते हैं इश्क में जो ना फना हो वो मोहब्बत किससे कैसी गुलाम बादशाह का ओएसटी सुनाए बुधरायां थोड़ो सबर त कयो तकड़ भला छा जी अथव केर जड़ी गाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो बाबा अगरि नथा कयो त इहा खेर जहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे का तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करिणो पवंदो अमान अल्लाह महर हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको वसीम अली आपने टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है जी और सालार अली कहते हैं सलाम हाउ आर यू शो बेस्ड है टॉपिक का पहले से आपको जवाब मिल चुका है मैं बताऊंगा तो कॉपी कहेंगे सिस्टर
अरे अल्लाह केडा मासूम आयो कसम सता सब. अच्छा मोहसिन अली भी हमें सुन रही है, आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है मोहसिन, बहुत शुक्रिया. और साजिद भाई आपको अच्छा कहते हैं सिद्रा मुस्कान असान जी भी मोकल पूरी थी 4 महीना बस दुआ कयो वरी दुबई मां मैसेज कंदा सी दुआ कयो खैर सां पहुंचा. चलो जी अल्लाह कंदो तां खैर सां पहुंचंदा. आई बहुत शुक्रिया तां से गड आयो तां जो मोहब्बतू आइन बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तां लगायो पया कोनी यो बुधाय जो बतूल गाना वटो पंजो

बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने नहीं किया, जल्दी से पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। और इसी के साथ साथ हजार भाई हमें सुन रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। अनवर भाई कहते हैं अन्ना चौथा सिंध में, अल्लाह जाए बुधा कसम दे टैलेंट आए बाबा केर तो चेना है। और चाचा कहते हैं सिद्रा मुस्कान बेटा कराची में गर्मी बहुत है, मैं कल बाहर लगा के गया था डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो पसीना आया थोड़ी थोड़ा एसी कार में भी। अरे भाई दिन में नहीं लगाए ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम, रात को लगा के सो जाया करें चाचा।

0: अच्छा इरम हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहती मुझे प्यारी दिलबर दोस्त अब आपकी तबीयत कैसी है हां ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह कहां बुदा किया हो हबीबुल्लाह थेबू कहते सॉन्ग बुधराए शमरी मिराली जो हुस्न में तू जोरा मानु तू मोरवा अल्लाह बुधराया थी बुधराया झंडो मरी खां मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम मंजूर अली खास के लिए गुलाम खान मोहम्मद खास के लिए हाजी जान मोहम्मद खास के लिए कुर्बान खास के लिए भांजो मोहब्बतों बाबा तांके चौथा भली करी आया शहर गुलाब लगारी गोठ बाशम खान रिंद से शायर गाजी खान रिंद रिजवान अली रिंद फैजान अली रिंद शहजाद अली रिंद छोटी कुनैन जहरा आपका शो सुन रहे हैं शो जबरदस्त है अल्लाह पाक आपको और आपकी टीम को और सुनने वालों को खुश रखे आमीन सुम आमीन जवाब है ओके गोठ गुलाब लगारी खान साबिर लगारी सुल्तान लगारी रिजवान लगारी वालेकुम अस्सलाम शोर नाई से प्लीज प्ले समीना गुडी मां कोशिश कयां थी तांजो पसंद जो फरमाइशों सब हलायो पर प्रोग्राम नंढड़ो आए
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by. अगर खूबसूरती चाहिए, तो acne and scars reduce करके skin को बनाए radiant, sparkling और दे शानदार miracle glow Arch Beauty Cream.
0: तो लगता है कोई crime के लिए बोल दिया है आपने. तो ये जरा Indian गाने नहीं लगा सकते हम. और बहुत शुक्रिया हमारे प्यारे जयपाल भाई. कहते हैं कि गुलाम की मयार भी अजीब होती है. शरीफ को बेवकूफ, मकार को चालाक, कातिल को बहादुर और मालदार को बड़ा आदमी समझते हैं. नाइस भाऊ, बिल्कुल भाऊ, आपने तो नाइस ही बात कर दी. बहुत बढ़िया.

असांखे न खपे लीलो ईअं न असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम खपे ऐं बिल्कुलु बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे खपंदी जॾहिं तव्हां वेंदो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर तां मालूमात वठो मिले थी कोन मिले थी अवेलेबल करायो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो बाबा पोइ सफ़ा ई हर को तव्हांजी तारीफ़ कंदो हर को तव्हां ते आशिक थी पवंदो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो सुहिणा सुहिणा थी वञो टाइम थियो आहे बाबा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था वापसी जल्दी मोटी अचां थी गाॾी न वञो हिते वेठा हुजो ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग

0: पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752642 या बैंक इस्लामी .com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
1: खुशखबरी, आवाज़ें पंजे शहर मीरपुर खास में छंछर जे दी सुबह जो 9 वगे खा शाम 5 वगे ताई लगी रही आ है, जे में शेख जैद अस्पताल लाहौर ऐं पाकिस्तान जे आला तालीमी इदारन मां तालीम याफ्ता मीरपुर खास डिवीजन जो वाहिद चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर गणेश मल खत्री, MBBS DTCD, MCPS पल्मोनोलॉजी, TB, कोरोना, नमूनिया, दमो, पुरानी खंग, बलगम में रत जो अचण, नज़लो, जुकाम, फेफड़न में जारो, हवा या पानी जो भरजण या कैंसर, मोटापे जे करे साहो, सुमण में तकलीफ ऐं सिगरेट नोशी वारे मरीजन जी मुफ्त चकास कंदो ऐं दवाऊं पिण मुफ्त दिनियो विदियो। नोट, डॉक्टर साहब 28 सितंबर 2026 खां OPD पिण शुरू कंदा। एड्रेस, माई डायग्नोस्टिक क्लिनिक वेझो माई लैब न्यू टाउन मीरपुर खास। राबते लाइ 03242449327।
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बची है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: पंजे शहर मैदे जी जलन तेजाबियत या अल्सर गले में मानी जी रुकावट जिगर जी चर्बी कारी अई फिकी साई वात अई पेट मा रत जो अचन कब्ज बवासीर वजन जो वधी वणन अहड़न तमाम बीमारियन वारे मरीजन जो मुआइनो अई इलाज कंदी आहे। ओपीडी टाइम सुमर अई खमीस सुबह जो 10 वगे खा मंझंद 2 वगे ताई अई अंगारो अई अरबा मंझंद 3 वगे खा शाम 6 वगे ताई। एड्रेस रहमत मैदा वो जिगर केयर वेझो आगा खान लेबोरेटरी अली मेडिकेयर सेंटर PM कॉलोनी मीरपुर खास। वधिक मालूमात लाए एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद इरफान अब्बासी 03104883।
3: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इनमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन की स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: सिंधड़ी आमों की सर्दी
1: पहुंचे छा आवा चायो था त आवा जी पुडक जी मशहूरी थिए त पोए आवा वट आहे मौजूद जीए मीरपुर खास FM 88 जो आवाज जेको आवा जो पैगाम पहुंचाए हर हंद। जीए मीरपुर खास FM 88 केतरनी नंढन वडन शहरन में बुधो विंदो आहे। पब्लिसिटी जो बेहतर जरियो जीए मीरपुर खास FM 88 वधिक राबते लाए मार्केटिंग मैनेजर मोबाइल नंबर्स 03227243013 आई 03333722071।
5: मीरपुर खास की आवाज़।

0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक.
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन ता पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी पारन पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारे हो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इनन जे ख्वाबन के उडाम देन था. पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजू.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के सी हमें सिर्फ GFM 88 नेटवर्क दे
3: तरफ बढ़ता है लेकिन

बातें क्या ही बात है। और इसी के साथ साथ अगर आप भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपको वेलकम इन करता पता है, सबको पता है। हाँ जी, तो ऐसा है कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप इसलिए करेंगे क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए जरूरी है। कई मरतबा हम बहुत सारी ऐसी चीजें अपनी जिंदगी में कर लेते हैं जिनका हमारी जिंदगी में कोई

ना तो सब स्वीट सिस्टर्स को ओकी। अच्छा हमारे साथ हैं जी, जहाँ गलती नहीं वहाँ झुकना नहीं, और जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रुकना नहीं। जयपाल भाई हमारे साथ है, ढाढो भलो तवां शेर चयो आहे। मंजूर अली खास के लिए है, चाचा खालिद को शादी मुबारक झंडो मरी खां। हलुड़ी हलुड़ी मुबारकूं अचन थियूं। अच्छा ये मौजूद है चाचा खालिद, हम ये सुन रहे हैं और कहते हैं, अच्छा टॉपिक का जवाब दिया है, गाना मैं देखती हूँ, मिल गया तो लगाते, नहीं तो 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनेंगे, ठीक है। वैसे भी आपने ओएसटी की फरमाइश कर दी है। अल्ताफ जाग जानी चाचू हमारे साथ कहते हैं, प्लीज मिले बरकत अली, वफा की थी न रहिया वफा तलाश न कर, ये भी ना ये भी ना है। डेडिकेट बिस्मिल अजरा खोसो एंड मी, सो थैंक यू चाचू। हबीबुल्ला थेबू तक घना मैसेज क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 खुटनी कोन था, हिकड़ी सिर्फ गाने जी फरमाइश वणुड़ी, एडा 12 मैसेज रुगो इने हिकड़ी गाने जे लाई होया। तोब। अच्छा जयपाल भाई कहते हैं कि मास्टर फतेह का कोई अच्छा वाला गाना लगायो भाऊ। मास्टर फतेह केड़ो छो तेला ही रात फतेह या मास्टर फतेह, इन्हें में थोड़ो कंफ्यूज थी, तां कंफ्यूजन दूर कयो, केन जो गानो बुधन चाहियो था। मीरपुर खास अब्दुल्ला महर भाई हमारे साथ हैं, भाई जी ऐसे ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए। अच्छा जेन की चॉइस पर हमने ये वाला गाना लगाया है, फरमाइश कर रही थी गुलाम बादशाह सुंदरी के ओएसटी की, तो आइए जरा सुनते हैं।

दर्दे दिल, दर्दे दिल, थांबा थांबा, रुको रुको. चाचा खालिद को वो मुबारकबाद दी जा रही है, ठीक है. और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, ठीक है.

नहीं जी, मैंने ये ड्रामा नहीं देखा. मैं जो आजकल ये ड्रामे बन रहे रोमांटिक से हीरो हीरोइन वाले, ये मुझे पसंद नहीं आ रहे. पाकिस्तानी गाने बस थोड़ी हटके, थोड़ी उनकी अगर स्टोरी हो तो वो देख लेती हूँ, वरना ये सारे ड्रामे रेगुलर लगते हैं बस मुझे. एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, एक विलन होगा, एक अमीर होगा, लड़की गरीब होगी, ये क्या है, सो बोरिंग.

और जो ये फहीम भाई आपने जो फेस्टिवल हुआ था कल परसों शायद उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसी चीजों में, नहीं जाती मैं।

अच्छा अली रजा लगारी भाई, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। मधोश भाई हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू। मुजाहिद मलिक कहते हैं, मानो बिल्ली मेरा कमेंट कहाँ गया, पढ़ा नहीं। पढ़ा भाई पढ़ा, जवाब दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कमेंट्स को इग्नोर कर दूं। अच्छा हमारे साथ ही यहाँ पर अब्दुल हफीज थेबू कहते, आंसर दिया है आपने बढ़िया, कहते अनुषा बतूल कहाँ है, वो अपने घर है, अपने घर। किशोर भाई कहते हाँ सब जागना, मुखे याद न थो करी, मुखे याद न थो करी। यही तो है ना, ऐसा ही तो होता है। आप बोले हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन आप डीस्किन ब्यूटी क्रीम को इग्नोर मत कीजिएगा, डीस्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। और ऐसे कहते हैं रुको डीस्किन ब्यूटी क्रीम जो पूछनी आई तांग, अच्छा पूछा खीरा जो किलो घने आए, खंड जो किलो घने आए, ये गाने पूछो। जो मेरे काम की बात है मैं वही पूछूंगी ना।

आजार भाई बिल्कुल आप पूछिए, जिससे मर्जी पूछिए, ये भी पूछिएगा डे स्किन ब्यूटी क्रीम का कितना फायदा है, आपको अच्छे से बता देंगे। मोहम्मद जमान भाई कहते हैं कि शो अलाई सुठो आ बुआ जी, भले कोई लिख रहा है बैठे एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम वीआईपी आए बुआ जी, भले कोई तो भले कोई असानो चेहरो भेटाए दिसे, वाह वाह वाह वाह जी शायरी हुई, सफा मेला लूट लिया आपने तो। और न खाए अलावा ही असानी प्रोग्राम जो लास्ट वीक आहे आई बी एकड़ी गाल तां के बुधाई नहीं अला त अलाई छा हो।

अच्छा अब्दुल हफीज तेबू भाई हमें 5 साल के बाद सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया जी आपको वेलकम कहते वापसी आने पर अच्छा दर्दे दिल कहती हैं कि सब मासूम हैं पर मैं कुछ ज्यादा ही मासूम हूं निदड़ी को शायद आप भूल रही हैं वो और ज्यादा मासूम है अच्छा हजार भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है अच्छा शमन अली हमारे साथ ही कहते हेलो जी शमन अली भाई कहते हैं कि तुमको चाहने की वजह कुछ भी नहीं इश्क की फितरत है बेवजह होना अली अब्दुल गफार भाई हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम अरशद मरी हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम

0: सालम मरी भाई आपको भी वेलकम कहते हैं, वेलकम वेलकम। और इसी के साथ हमारे जाने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है, तो आप लोगों से इजाजत लेंगे जनाब। और आप जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखिएगा, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में अगर आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताया जाता है तो जाहिर सी बात है कुछ तो बात होगी ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम की। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी इस्तेमाल करने वाले हैं तो लाजमी करके देखिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको पता चले कि भाई जान डी स्किन ब्यूटी क्रीम एडी भली क्रीम आखिर छो आए, छो तो तव्हांजे चेहरे जा सब प्रॉब्लम दूर थी वेंदा, तव्हांखे खूबसूरती मिलंदी, तव्हां सफ़ाई चमकंदा वधंदा, माण्हू तव्हां खां पुछंदा बाबा छा इहो राज़ आहे तव्हांजे खूबसूरती जो, ऐं तव्हां ॿुधायो बाबा ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल अथव। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे हर जॻह ते आराम सां मिली वेंदी। ऐं हिन खां अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾो गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि ट्राए करणो आहे। डी स्किन जो फेस वॉश बि लॻायो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि लॻायो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो। फज़ली कहती आप बि, हांजी बहुत शुक्रिया, आप बि ख़ुशि रहे, सभु ख़ुशि रहे, ख़ुशि रहे। और इसी के साथ साथ लेते हैं जी इजाजत। बहर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग में कमेंट किया, लास्ट में कमेंट किया, मतलब पता चला कि आपने पूरा प्रोग्राम सुना। थैंक यू वेरी मच। और आज के प्रोग्राम का जो सवाल था उसका जवाब तुर्की था, तुर्की, ठीक है। और इसी के साथ वरी तव्हां सां मिलूं था जी 5 बजे वारे प्रोग्राम में। पंहिंजो ओ हीरो सरो ख्याल रखे।
1: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
2: Rite Beauty Cream. Glowing skin jo raaz. Powered by Biocon.

0: 28 और फेफड़ों की बीमारियों का मुफ्त कैंप तारीख 26 सितंबर बरोज हफ्ता सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लगाया जा रहा है जिसमें शेख सैयद अस्पताल लाहौर और पाकिस्तान के आला तालीमी इदारों से तालीम और
1: तरबियत पोलियो का खात्मा हो चुका है सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है अब जिम्मेदारी हम सब की है हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 3:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम एलोवेरा रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
2: इन कदमन के रोके भी सगे तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी
3: खुशखबरी आवाज पंजे शहर मीरपुर खास में छंछर जे दी है सुबह जो 9 वगे खा शाम 5 वगे ताई लगी रही आही जे में शेख जैद अस्पताल लाहौर ए पाकिस्तान जे आला तालीमी इदारन मा तालीम याफ्ता मीरपुर खास डिवीजन जो वाहिद चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर

वीर रजा केस जे अदालती कमीशन जो गुजरियल ॾींहं वारी कार्रवाई जो लिखित में हुकुमनामो जारी सेक्रेटरी सिहत सिंध SSP समी उल्लास सुंगरो ऐं POC कोर्डिनेटर शहरियार मेमण खे नोटिस जारी DSP सिराज अहमद लाशारी ऐं CPLC जे काशिफ इफ्तिखार खे 28 सेप्टेम्बर ते पेश थियण जो हुकुम अदालती कमीशन बार बार फातरियूं कराइण बावजूद समूरो रिकॉर्ड फराहम न करण ते अफ़सोस जो इज़हार कयो।

0: टंडो मोहम्मद खान में घरू तकरार था भाव था भाव कतल रेलवे फाटक भरसा बारन में घरू तकरार था जेड़ो थो फायरिंग में रफीक मंगसी मारजी वयो मंजूर मंगसी जख्मी थी पयो मकतूल जो मड़ जख्मी के अस्पताल मुंतकिल कयो वयो रुस्तम भरसा
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: वाकी वजीर ताला तारण चयो आहे त माण्हुनि खे कूड़े बयाने पोयां लॻाए ज़हन साज़ी कई वई. जॾहिं मईशत तरक़ी करण लॻंदी आहे त ही धरणा एहतजाज करण शुरू कंदा आहिनि. पीटीआई केपी में बि को कम न कयो आहे. पीटीआई 13 सालनि में केपी खे तबाह करे छॾियो. पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त असां चाहियूं था त मार्च पुरमन थिए. हुकूमती टोलो प्रोपेगेंडा थो करे असां इदारनि ते हमला कंदासीं. असां ॻाल्हियुनि जे हक़ में आहियूं. ख़बर आहे त कंहिं सां ॻाल्हाइणु घुरिजे पर ॻाल्हियूं न पियूं थियनि. सियासी मसइलनि जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए निकिरंदो. पीटीआई क़यादत महमूद ख़ान अचकज़ई ऐं अलामा राजा नासिर अब्बास ॻाल्हियुनि लाइ तयारु आहिनि.

0: ofensivas. Dar în zi poate mă contra de
1: एक औरत जख्मी वारिसन जो चवण है तो पेंची बिरादरी जे मानन जमीनी तकरार ता चैन जण के कत्ल कयो है। एसएसपी लाड़कानो जो चवण है तो वही धुरियों पेंची बिरादरी जे मानन के कत्ल में मुलविस रहियो आहन। वडे वजीर मोहम्मद अली शाह पारा वाके जो नोटिस आज जी सिंध का रिपोर्ट तलब जवाबदार गिरफ्तार करण जो हुकुम। फौज अफगान तालिबान रजीम जहा ड्रोन हमला नाकाम बणाए छा। अफगान तालिबान रजीम तरफा 8 ड्रोन पाकिस्तान के फिजाई हदन में दाखिल किया। सिक्योरिटी जरिए मूजिब पाक फौज के एयर डिफेंस सिस्टम खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान का आयल 8 ड्रोन्स के किराए तबाह कर छा। अफगान तालिबान अवामी हंधन के निशानो बणन वाली घुसदिलाणी कोशिश कई। 4 ड्रोन्स तुरखम बॉर्डर भरसा 4 ड्रोन्स कोहाट भरसा जाबलू इलाकन में किराया व्या। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी से हमले की कोशिश नाकाम। 9 दहशतगर्द मारे गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मूजिब दहशतगर्दन किंग वादी में सिक्योरिटी फोर्सेस से हमले की कोशिश कई। फोर्सेस की कार्रवाई में बद दहशतगर्द थरे से मारे गया। 7 दहशतगर्दन के पीछो कर जन्म बेड़ो किया। अग सिक्योरिटी फोर्सेस की तुर्बत में कार्रवाई में बद दहशतगर्द मारे गया। पाक फौज कुर्रम सेक्टर मां फितनतुल खारिजीन मुल्क में दाखिल थियण की कोशिश नाकाम बणाए छी। अफगान तालिबान पोस्टू छे फरार थी व्या। सिक्योरिटी जरिए मूजिब नाकामी सबब अफगान तालिबान पाकिस्तानी चौकियों से फायरिंग कई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई दुश्मन के भजन से मजबूर किया।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: खेडियो एक नौ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पाक फौज कुरम सेक्टर में फितना खारजन मुल्क में दाखिल थियण की कोशिश नाकाम बणाए छी। अफगान तालिबान पोस्टू छे फरार थी व्या। सिक्योरिटी जरिए मूजिब नाकामी सबब अफगान तालिबान पाकिस्तानी चौकिन ते फायरिंग कई। सिक्योरिटी फोर्सिस की जवाबी कार्रवाई दुश्मन के भजन से मजबूर कयो। न्यूयॉर्क में वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की मुलाकात। पोलियो के खात्मे माओ और बार की सेहत समेत मुख्तलिफ शोबन में सहकार से गालू कई हुई। वजीर आजम पाकिस्तान में पोलियो के मुकम्मल खात्मे लाए हुकूमत जो अजम वरजाया। बिल गेट्स वजीर आजम की क्यादत में पाकिस्तान की पोलियो खात्मे लाए कोशिशों की वाखाण कई।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: at 7 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN।
3: पाक फौज अफगान तालिबान रजीम जा ड्रोन हमला नाकाम बनाए छड़ा। अफगान तालिबान रजीम तरफा 8 ड्रोन्स पाकिस्तान के फिजाई हदन में दाखिल थे। सिक्योरिटी जरिए मूजिब पाक फौज के एयर डिफेंस सिस्टम खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान का आयल 8 ड्रोन्स के केराए तबाह कर छो। अफगान तालिबान अवामी हंधन के निशानों बनाने वाली बुजदलानी कोशिश कई। कुरम सेक्टर में फितना खारजन के मुल्क में दाखिल थे की कोशिश भी नाकाम। पाक फौज जवाबी कार्रवाई बाद अफगान तालिबान पोस्टू छे फरार।

जीअं सिंध रहबर कमेटी 15 अक्टूबर ते लाड़काणे ऐं 8 नवंबर ते कराचीअ में वहदत सिंध मार्च जो ऐलान करे छॾियो। हैदराबाद में रहबर कमेटी जे सरबराह रियाज़ चांडियो जी सदारत हेठि इजलास में डॉक्टर नियाज़ कालाणी, नवाज़ खान ज़ोर, शबीर अहमद जमाली ऐं ॿियनि जी शिरकत। अॻवाननि जो चवणो हो त वफ़ाक़ी क़ुवतूं सिंध जे ज़रई ज़मीननि, सामूंडी पटी, तेल, गैस, कोयले, मैदनियात ऐं सिंधू दरिया ते कब्ज़ो करणु चाहिनि थियूं, जेको सिंधी क़ौम कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदी। सिंध में नस्ली ऐं लसानी तसाद पैदा करण वारनि कोशिशुनि खे नाकाम बणायो वेंदो।

0: तीअं बाबा पहिरीं थी वई, पहिरीं जी पई मुंहिंजे पुट खे, अलावर जे पुट मुंशर पुट यार मां भाणे जा शहर मुंहिंजो ॾेर आहे हुनखे मारिजी वियो। बाबा साईं अहिड़ा सॼा ज़ुल्म चलाए मूंसां हक़ कयो, मूंसां न हक़ न कयो।
1: लाड़काणे में हथियारबंदनि जी फायरिंग में मारिजी वियल चार ॼणनि जे वारिसनि जो नओं देरो में लाश रखी धरणो। खोखरा बिरादरी जे माण्हुनि लाश बाबे ज़ुल्फ़कार वटि रखी धरणो हयो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़ें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
4: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरण ऐं सकरण जो आवाज़
5: GFM 90.8।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

लेवीअ जो पेट्रोलियम कीमत सां को वास्तो न आहे. हुनजी ख़ात्मे लाइ ॿिनि महीननि खां जदोजहद जारी आहे. अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहीम रहमान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त पेट्रोल सस्तो न थियो त मैशत तबाह थी वेंदी. लेवीअ जे ख़ात्मे लाइ हुकूमत ॾिनल तजवीज़ुनि ते अञा ताईं को जवाबु न आहे ॾिनो.

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: बेस्टर गुहर चयो असांखे खबर आहे त कंहिंसां ॻाल्हि करणी आहे मसलनि जो सियासी हल घुरणो पवंदो कुझु माण्हू सियासी मसलनि जो सियासी हल नथा चाहिनि
4: पीटीआई जी 27 सेप्टेम्बर वरी इम्कानी मार्च खे मुंहुं ॾियण जूं तयारियूं जारी पंजाब हुकूमत समूरी सूबे में कलम 144 लागू करे छॾियो रेंजर्स जूं बि ख़िदमतूं तलब पंजाब जी घरू वज़ारत मूजिबि रावलपिंडी अटक जहलम ऐं मियांवाली में रेंजर्स मुक़ररु थींदी पंजाब हुकूमत पारां 27 सेप्टेम्बर ते मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मोबाइल फोन ऐं इंटरनेट सर्विस बि मुअतल करण जी दरख़्वास्त लाहौर खां इस्लामाबाद मोटरवे ज़रिए माल बरदार गाॾियुनि जी इस्लामाबाद में दाख़िला ते बि पाबंदी लागू पिशावर मोटरवे अॻुवाट बंदि कयो वियो
3: नेवी जो पेट्रोलियम क़ीमत सां को वास्तो न आहे इन जे ख़ात्मे लाइ ॿिनि महीननि खां जिदोजहद जारी आहे अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ तैमूर रहमान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त पेट्रोल सस्तो न थियो त मईशत तबाह थी वेंदी नेवी जे ख़ात्मे लाइ हुकूमत ॾिनल तजवीज़नि ते अञा ताईं को जवाब न आहे ॾिनो
4: लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नोमान महमूद मक्का दिफाई मुआहदे तहत पहिरियों सेक्रेटरी जनरल मुक़रर परॾेही तर्जुमान चयो आहे त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नोमान महमूद मक्का मुआहदे तहत क़ाइम इतिहाद जे जनरल सेक्रेटरीट जी क़यादत कंदो मक्का मुआहदे तहत इतिहाद जो जनरल सेक्रेटरीट रियाज़ में क़ाइमु कयो पियो वञे
3: फ़ौज अफ़गान तालिबान रजीम जा ड्रोन हमला नाकाम बणाए छॾिया अफ़गान तालिबान रजीम तरफ़ां 8 ड्रोन पाकिस्तान जी फिज़ाई हदनि में दाख़िल थिया सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि पाक फ़ौज जी एयर डिफेंस सिस्टम ख़बर पख़्तूनख़्वा में अफ़गानिस्तान खां आयल 8 ड्रोन खे किराए तबाह करे छॾिया अफ़गान तालिबान अवामी हंधनि खे निशानो बणाइण वारी बुज़दिलाणी कोशिश कई कुरम सेक्टर मां फितनतुल ख़ारिजीन जे मुल्क में दाख़िल थियण जी कोशिश बि नाकाम पाक फ़ौज जी जवाबी कार्रवाई बाद अफ़गान तालिबान पोस्टूं छॾे फरार थी विया
4: सिक्योरिटी फोर्सिस जो कोयटा जे इलाइक़े शाबान में ऑपरेशन फायरिंग जी ॾे वठि में फितना हिंदुस्तान जा 13 दहशतगर्द मारिजी विया ISPR मूजिबि सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दनि जा केतिरा ई ठिकाणा बि तबाह कया हथियार ऐं बारूदी मवाद बि हथ आयो दहशतगर्दी जे मुकमल ख़ात्मे ताईं क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी रहंदो
3: न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सां बिल गेट्स जी मुलाक़ात पोलियो जे ख़ात्मे माउ ऐं ॿार जी सिहत समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार ते ॻाल्हियूं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मां पोलियो जे मुकमल ख़ात्मे लाइ जो अज़म वरिजायो बिल गेट्स वज़ीर आज़म जी क़यादत में पाकिस्तान जे पोलियो ख़ात्मे लाइ कोशिशुनि जी वाखाण कई
4: नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पारां वालर अल कश्मीर में भारती ज़ुल्मनि जी मज़म्मत इसहाक़ डार चयो त वालर अल कश्मीर में आबादी तब्दील करण जी कोशिश थिए पई आलमी बिरादरी कश्मीरनि सां कयल वाइदा पूरा करे अफ़ग़ानिस्तान में मौजूदु दहशतगर्द ग्रुपनि ते ॻणती आहे अफ़ग़ान सरज़मीन पाड़ेसरी मुल्कनि ख़िलाफ़ इस्तेमालु न थियणु घुरिजे
3: GSN ड्राइवर कमेटी 15 अक्टूबर ते लाड़काणे ऐं 8 नवंबर ते कराची में वहदत सिंध मार्च जो ऐलान करे छॾियो हैदराबाद में ड्राइवर कमेटी जे सरबराह रियाज़ साडियो जी सदारत हेठि इजलास में अहम फ़ैसिला अॻवाणनि चयो त वफ़ाक़ी क़ुवतूं सिंध जे ज़मीननि सामूंडी पट्टी तेल गैस कोयले मादनियात ऐं सिंधु दरिया ते कब्ज़ो करणु चाहिनि थियूं जेको सिंधी क़ौम कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदी सिंध में नस्ली ऐं लिसानी तज़ाद पैदा करण वारियुनि कोशिशुनि खे नाकाम बणायो वेंदो

सिंध असेंबली की पार्लियामानी कमेटी के इजलास में के इलेक्ट्रिक के सीईओ बदरा बिन ऑफिसर की शिरकत सवाल तसली बख्श जवाब न देने बिन्हीं अमलदार के इजलास मां ही बाहर कढ़ो वो कमेटी चेयरमैन पारा नोटिस जारी करने जो हुक्म पीपल्स पार्टी एमपी गुलाम कादिर चांडियो के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदन वक्त जाया कर मामलो इस्तेहका कमेटी के मान्य वे सादिया जावेद जो चवण हो के इलेक्ट्रिक पारा जे अमलदार आया उन्हें वट सवाल को भी जवाब न हो

0: फेरे से लाड़े को तेरे बाबा फेरन छी भाई फेरन जी भाई मुझे पुट्टा के अलावारा के पुट्टा मनसुर पुट्टा यार मामा के भाने जा शहर में जो भाग देरा उन्हें के मार दियो बाबा सही अड़ा सा जुल्म चलाए मुझे हक क्यों ना सा ना कर देखियो
1: लाड़काने में हथियार बंदन की फायरिंग मारजी वेल चार जन के वारिस जो नौ दिनों में लाश रखी धरण हो कोकर बिरादरी के माड़न लाश बाबे जुटकार वट रखी धरण हो एहतजाज कवाबदार असाजे मानून के कतल कर वो जुल्म किया है अजोके वाक्य समेत अठ मू कतल चुका पुलिस कातिल के गिरफ्तार करें।

0: रतोदेरो वेझो मुबैना तौर भाइटन जी चाचे जे घर ते फायरिंग निंगरी कतल ज़ाल मुड़ सख़्मी गोठ अली मोहम्मद बिरोही में फायरिंग सबब ॿारनि वरनि जी अज़ीज़ बख़्त बिरोही मारिजी वई गोलियूं लॻण सबब निंगरीअ जो पीउ अयूब बिरोही ऐं अमर आयशा बिरोही ज़ख़्मी थी पिया पुलिस पहुची ज़ख़्मियुनि खे तालके अस्पताल पहुचायो हालत ॻणती जोगी हुजण सबब लाटकाणे मुंतक़िल मक़तूल निंगरीअ जी चाचे निज़ामुद्दीन बिरोहीअ जो चवणु आहे त हुननि जे भाइटनि अब्दुल ख़ालिक ऐं शबीर बिरोही भाउ अयूब जे घर ते हमिलो कयो नौशरो फिरोज वेझो बि सोलंगी बिरादरी जे ॿिनि दौरनि में जहिड़े दौरान फायरिंग में हिकु ॼणो क़तल भरंड वारे इलाइक़े में जहिड़े दौरान गोलियूं लॻण सबब अब्दुल रशीद सोलंगी मारिजी वियो
1: लतीफ टाउन में हथियारबंदनि जी फायरिंग में पुलिस अहलकार ज़ख़्मी सेक्टर 22B में फरमान अल्लाह पुट सईद गनी ज़ख़्मी थी पियो पुलिस जो चवणु आहे त वाकियो पुर मुज़ाफ़त दौरान पेश आयो फायरिंग कंदड़ फरार थी विया सूबाई घरू वज़ीर अहलकार जे ज़ख़्मी थियण जो नोटिस वठंदे SSP मलीर खां रिपोर्ट तलब करे वरिती

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: जी एफ एम 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

इश्क जे असरार मां बाहूं कढूं त गुनाहगार थी। इश्क जे असरार मां बाहूं कढूं त गुनाहगार थियूं, चंड जे प्यार मां बाहूं कढूं त गुनाहगार थियूं। इश्क जे असरार मां बाहूं कढूं त गुनाहगार थियूं, चंड जे प्यार मां बाहूं कढूं त गुनाहगार थियूं। ज़ख़्म जे मिलन पिया त भले पिया मिलन समें, ज़ख़्म जे मिलन पिया त भले पिया मिलन समें, सूंह बेक़रार मां बाहूं कढूं त गुनाहगार थियूं। तुंहिंजो चहिरो अखियुनि खे अर्पे वियो आहे मायना का, तुंहिंजो चहिरो अखियुनि खे अर्पे वियो आहे मायना का, तुंहिंजे महकार मां बाहूं कढूं त गुनाहगार थियूं। तूं अची अची अची न अची जानम, तूं अची अची अची न अची जानम, तुंहिंजे इंतज़ार मां बाहूं कढूं त काफ़िर। तूं अची अची अची न अची जानम, तुंहिंजे इंतज़ार मां बाहूं कढूं त गुनहगार थियूं। सच ऐं ख़ुशबूअ जो मौत त थियणो ई नाहे, सच ऐं ख़ुशबूअ जो मौत त थियणो ई नाहे, इन ई ऐतबार मां बाहूं कढूं त गुनहगार थियूं। इश्क जे असरार मां बाहूं कढूं त गुनहगार थियूं, चंड जे प्यार मां बाहूं कढूं त गुनहगार थियूं।

दोस्तों एक रोमांटिक प्यार भरियो मोहब्बत जो एहसास खूबसूरत गीत अचो तो गजी एंजॉय क्यों है दिल ते ना वो तो जो बेजो लिखा तो काफिर।

मैं कर रहा हूं इकट्ठे दुनिया के तमाम रंग, मैं कर रहा हूं इकट्ठे दुनिया के तमाम रंग, उसकी आंखों का सदका उतारना है मुझे। वो लाख गुस्से में बोले उठ के जाता नहीं, वो लाख गुस्से में बोले मैं उठ के जाता नहीं, मुझे पता है फिर उसने पुकारना है मुझे।

मुझे पानी में उतरने का इशारा करके, मुझे पानी में उतरने का इशारा करके जा चुका चांद समंदर से किनारा करके। मुझे पानी में उतरने का इशारा करके जा चुका चांद समंदर से किनारा करके। और तजर्बा एक ही काफी है इबरत के लिए, तजर्बा एक ही काफी है इबरत के लिए, मैंने देखा ही नहीं इश्क दोबारा करके।

हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था, हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था, पर इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। हिजरत के अलावा, हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था, पर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। दो बोल मीठे नहीं थे हमको मयसर, दो बोल भी मीठे नहीं थे हमको मयसर, यानी हमें तिनके का सहारा भी नहीं था। दो बोल भी मीठे नहीं थे हमको मयसर, यानी हमें तिनके का सहारा भी नहीं था। उस शख्स ने जिंदा भी नहीं छोड़ा था, उस शख्स ने जिंदा भी नहीं छोड़ा था मुझको, हालांकि मुझे जान से मारा भी।

बातों बातों में ही बातों से निकल जाएंगे, बातों बातों में ही बातों से निकल जाएंगे, हम दिनों से तेरी रातों से निकल जाएंगे। बातों बातों में ही बातों से निकल जाएंगे, हम दिनों से तेरी रातों से निकल जाएंगे, जिंदगी तू हमें बस ढूंढती रह जाएगी, जिंदगी तू हमें बस ढूंढती रह जाएगी, जिंदगी हम तेरे हाथों से निकल जाएंगे।

जी दोस्तों, वक्त आए हिकड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। ब्रेक खां पोए वापस वरी विरंदासे, अवां जो फोन कॉल्स भी अटेंड कंदासे, अवां सां खोड़ साजूं गालियूं भी कंदासे, दिल जूं गालियूं कंदासे, कचहरी कंदासे, त पोए वापस वरंदासे हिकड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोए। ॿुधंदा रहो जीए एफ एम नेटवर्क।

0: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
2: तहजीब और सकाफत से सजी सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास. GAFM 88 की आवाज.
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
4: तो आज ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन, तो कोई तवां लाए आए एक बेहतरीन मौको. सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाए दाखिलाओं जारी हैं. 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD, 5 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA. खास लेतूं स्कॉलरशिप्स मौजूद. बिन सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल.
5: हर बार जा नंडड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो. इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो. छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था. पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी.
6: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाणे पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम. अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर दी. बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड. इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
7: अजरक के रंगों से रंगी,
8: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
7: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज.
8: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: बिजनेस के प्रमोशन, जॉब वैकेंसीज, पब्लिक अनाउंसमेंट्स, इवेंट्स, सेमिनार्स, स्पेशल ऑफर्स, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, लाइव मेंशंस और कस्टमाइज्ड प्रमोशनल कैंपेन्स या किसी भी किस्म के एडवर्टाइजिंग कैंपेन। GFM है आपका भरोसेमंद मीडिया पार्टनर। अपनी एडवर्टाइजिंग को दीजिए ज्यादा रीच, बेहतर इम्पैक्ट और मौसर नतीजे। एडवर्टाइजिंग और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें स्टेशन मैनेजर बाबर शेख 03009319667।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो का बचाव जब कतरा जरूर प्यारो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
2: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम

बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें।

0: सितारन जे बख में सुतियूं चाहतूं खुली अख त सुडकी उथियूं चाहतूं सितारन जे बख में सुतियूं चाहतूं खुली अख त सुडकी उथियूं चाहतूं न चंड साण चर्चा न निंड साण नाता न चंड साण चर्चा न निंड साण नाता असां खां अलाए किथ रुठियूं चाहतूं अड़े वक्त तोसा निबेरो कबो अड़े वक्त तोसा निबेरो कबो घणियूं तोबे आहिनि घुटियूं चाहत कुदर्दन ऐं ज़ख़्मनि खे सीबा हणी कुदर्दन ऐं ज़ख़्मनि खे सीबा हणी को मुर्की पुछे छो लुटियूं चाहत तूरीतन जी रातन में विकजी वें ऐं रस्तन में आहिनि टुटियूं चाहतूं रहियो ख़्यालु ख़ुशबू संदो भाकिरें रहियो ख़्यालु ख़ुशबू संदो भाकिरें दिलि जी हर कुंड में हिन फुटियूं चाहतूं सितारनि जी बख में सुतियूं चाहतूं खुली अख़त सुॾकी उथियूं चाह जी बिल्कुल जेको कुछ अवां सोचे रहा हो एडवांस में उहो कुझु मां सोचे रहियो थी सघे थो उहो कुझु अवां न सोचे रहिया हुजो जेको कुझु मां सोचे रहियो हुजां पर बहरहाल ख़्यालु मिलंदड़नि छाकाणि त दिलि जी ॻाल्हि आहे अचो त दिलि जी ॻाल्हि ॿुधूं कंहिं हिकु दोस्त खां अस्सलामु अलैकुम केर साईं किथां खां
1: हुसैन
0: बख्सियाल वेलकम भली कार खुश आमदीद प्यारा कहिड़ा हलन हिते थोरी रश वधीक आहे लख कुर्ब
1: हा बाक़ी शामिल
0: मूंखे ख़बर पवंदी त मां त हिकु त जेको आहे त मतिलबु हूअं त कुंड चवां पर कुंड न आहे मां त मतिलबु सिंध जे टे वॾे शहर में वेही करे मां अवां सॼणनि लाइ हीउ प्रोग्राम जेको आहे सखर स्टेशन खां करे रहियो आहियां त इन उमेद दोस्त ॿुधी रहिया आहिनि सिंध जी कुंड कुड़च में ॿुधी रहिया आहिनि त पोइ जेकॾहिं अवां रेडियो त न हूंदो फ़क़ति जेको आहे त फ़ोन कॉल्स ते हूंदो ऐं कॉल जंहिंजी न मिले उहो रेडियो बि न ॿुधे त पोइ मज़ो कोन ईंदो हीउ प्रोग्राम
1: आहे
0: कॾहिं कहिड़े ॾींहं ते
1: माण्हू सभु न सुहिणा पखी सभु न हंज माण्हू सभु न सुहिणा पखी सभु न हंज
0: अचे पियो मूंखे अवां मोहबती माण्हू आहियो जेके बि दोस्त कॉल करे रहिया आहिनि ऐं उहे बाज़ौक ऐं बाअदब बाशऊर माण्हू आहिनि जेके अहिड़े प्यारे मिज़ाज सां ॻाल्हि ॿोल कनि था ऐं प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि ॿुधनि था मुंहिंजो हिकिड़ो पंहिंजो हिकिड़ी थिंकिंग आहे ज़रूरी न आहे त हुन सां सभई सहमत हुजनि मुंहिंजो मञण इहो आहे जेको किताब पढ़े थो शायरी करे थो शायरी ॿुधे थो म्यूज़िक इंजॉय करे थो उहो कॾहिं बि पथर दिलि कठोर दिलि मतिलबु बेमुरवत नथो थी सघे उहो हसास दिलि जो बिल्कुलु नाव शामिल जी माज़रत सां मां अव्हांजी
1: अहिड़ो भाव मिली वियो आहे जो माना असां हींअर बिल्कुलु मुतमिन आहियूं ऐं ॾाढा ख़ुशि आहियूं अव्हां जेके प्रोग्राम कयो था ऐं ख़ुशि आहियूं
0: वरी महिरबानी वरी महिरबानी ये बाबर भाई जो महिरबानी हूं जन मुखे अपॉर्चुनिटी दिनी मुखे रनो अवा सरनन सा मुखातिब थन लाए
1: थैंक्स माय बाबर भाई अवा जा थोरा जेबी बेटा टेलीग्राम ते अलग पंजाबाद करे
0: वरी महिरबानी वरी महिरबानी
1: आई मुजा दोस्त जे के नवाब संगत आ रहे सदन के सलाम सही
0: जी
1: आई खुशी से सलाम असाइनमेंट पर मेरा पहले को इंजीनियर आए एसएम चार से सलाम
0: जी
1: आई बाकी जगह तो बदन का सभी सलाम आवाज चल के थैंक यू
0: सलाम बड़ी मेहरबान प्यारा कुर्ब लख लाइक थैंक यू मोहब्बत
1: थैंक यू सर थैंक यू

जी दोस्तों, बैक टू बैक कॉलिंग जो सिलसिलो जारी आए तो मां भी अवां के इंतजार कराइण कोन तो पुछा है कॉल शामिल कंदा से प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, केयर साईं किथा हां? हेलो हेलो प्यारा, अवां जी कॉल कनेक्ट थी चुकी है।